सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 10 जुलाई 2026 शुक्रवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष दशमी 2013 से विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:28 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:28 पर।

यकीन रखने वाले बलिदानी महापुरुषों ने संसार में चारों तरफ फैली नफरत की आंधी को हटाकर मानवता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। संसार बटा हुआ है, यह बिखराव में है, इसे एकजुट और जागरूक करके मानव एकता कायम करने वाले संतों भक्तों ने महान बलिदान दिए हैं। उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए ही मानव

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 10। आज का ये कार्यक्रम संगीतकार रविंदर जैन पर आधारित है। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन आरजे किरनी का।

0: से इच्छा से जुड़े मेरे व पांडु पुत्रों ने बोलो संजय क्या
1: संजय
0: क्या किया
1: संजय आवाज।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे संगीतकार की दुनिया में जिनके संगीत ने न केवल बॉलीवुड बल्कि हमारे दिलों में भी एक अलग जगह बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार रविंद्र जैन की, जिनकी धुनों में प्यार, भक्ति और संघर्ष की कहानियाँ छुपी हुई है। आज हम जानेंगे रविंद्र जैन के जीवन की उन पहलुओं के बारे में जिन्होंने उन्हें एक अमर संगीतकार बना दिया। तो आइए इस संगीत यात्रा में हमारे साथ जुड़िए।

रविंदर जैन सुप्रसिद्ध गायक, गीतकार, संगीतकार और संगीत निर्देशक थे, जिनका जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इनके पिता इंद्रमणि जैन थे, जो कि संस्कृत पंडित और आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। इनकी माता किरण जैन गृहिणी थी। रविंदर जी के 6 भाई और 1 बहन थी। जब रविंदर जी का जन्म हुआ तो 1 दिन बाद ही उनकी आंखें नहीं खुली। तब डॉक्टर ने सर्जरी के जरिए उनकी आंखें खोली, लेकिन उन्हें तब भी दिखाई नहीं।

रविंदर जी की शुरुआती शिक्षा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ब्लाइंड स्कूल में हुई थी। 4 साल की उम्र में ही उनके पिता ने उनकी संगीत की शिक्षा की व्यवस्था की, जिसके लिए उन्हें मिनी हारमोनियम दिया। उन्होंने जीएल जैन, नथुराम शर्मा और जनार्दन शर्मा जैसे दिग्गजों से संगीत की शिक्षा ली। उसके बाद रविंदर जी अपने चचेरे भाई के कहने पर कोलकाता आ गए। वहाँ उन्होंने 10 साल तक संगीत की आगे की शिक्षा ली। कोलकाता में ही रविंदर जी ने 5 रेडियो स्टेशन पर ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें नकार दिया गया।

रविंदर जैन को पहली नौकरी बालिका विद्या भवन में 40 रुपए महीने पर मिली। इसी शहर में उनकी मुलाकात पंडित जसराज तथा पंडित मणिरत्नम से हुई। नई गायिका हेमलता से उनका परिचय हुआ। वे मिलकर बांग्ला तथा अन्य भाषाओं में धुनों की रचना करने लगे। हेमलता से नजदीकियों के चलते उन्हें ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग कंपनी से ऑफर मिलने लगे। एक पंजाबी फिल्म में हारमोनियम बजाने का मौका मिला। सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुति के 151 रुपए तक मिलने लगे। इसी सिलसिले में वे हरिबाई जरीवाला संजीव कुमार के संपर्क में आए। वर्ष 1968 में राधेश्याम झुनझुनवाला के साथ मुंबई आए।

0: रविंदर जैन का पहला फिल्मी गीत 14 जनवरी 1972 को मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। रविंदर जैन ने अपनी संगीत यात्रा की शुरुआत 1974 में फिल्म कांच और हीरा से की, हालांकि उन्हें असली पहचान 1980 में आई फिल्म चांदनी से मिली। चांदनी का संगीत न केवल उस समय के दर्शकों के बीच हिट हुआ, बल्कि आज भी ये लोगों के दिलों में जिंदा है।
1: ओ ठंडे ठंडे पानी से न

0: घंटियों से
1: दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया।
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों का अद्भुत मिश्रण था जो उन्हें बाकियों से अलग करता था। वह संगीत के ऐसे साधक थे जिन्होंने अपनी धुनों से फिल्म की कहानी को न सिर्फ सजाया बल्कि उसे जीते जी महसूस भी कराया। 1973 में आई फिल्म सौदागर के लिए रविंदर जी ने गाने लिखे और कंपोज भी किए जिससे उन्हें पहचान मिली।

1987 में रामानंद सागर के निर्देशन में बने रामायण सीरियल ने इन्हें अमर बना दिया। रविंदर जी ने लगभग 200 फिल्मों और रामायण, श्री कृष्ण, अलिफ लैला जैसे धारावाहिकों के लिए अपना संगीत दिया था।

रविंदर जैन जी ने कई हिट मूवीज और धारावाहिकों में अपने संगीत का जलवा बिखेरा। इस सूची में सौदागर, चोर मचाए शोर, चित चोर, अखियों के जरोखे से, राम तेरी गंगा मैली, हीना, विवाह एक विवाह ऐसा भी जैसे फिल्में रही। उन्हें संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक दोनों का अद्भुत मिश्रण था जो उन्हें बाकियों से अलग करता था।

रविंद्र जैन का संगीत सिर्फ फिल्मी गानों तक ही सीमित नहीं था, उनके संगीत में आध्यात्मिकता की गहरी छाप थी। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और उनके भक्ति गीतों ने भारतीय संगीत को एक नई दिशा दी। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गीत उनके जीवन और भक्ति के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाते थे।

उनके भक्ति गीतों में एक अद्भुत शक्ति और शांति का एहसास होता था। इन गीतों ने उन्हें न केवल बॉलीवुड में बल्कि भारतीय संगीत के दूसरे क्षेत्र में भी एक महान कलाकार के रूप में स्थापित किया। जय हनुमान साईं बाबा जैसे धारावाहिकों में अपनी आवाज भी दी थी। रविंदर जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार आदि मिले थे। उन्होंने उजालों का सिलसिला नाम से उर्दू शायरी लिखी, जिसके लिए उन्हें 1997 में उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू साहित्य समिति से साहित्य पुरस्कार मिला।

9 अक्टूबर 2015 में शरीर के कई अंग खराब होने के कारण मुंबई में उनका निधन हो गया। इनके लिखे और गाए हुए गीत और भजन आज भी लोगों के दिलों और दिमाग पर छाए हुए हैं। रविंद्र जी ने साबित कर दिया कि अगर इंसान में टैलेंट और कुछ इच्छा कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी परेशानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने रविंद्र जैन के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उनका संगीत, उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा और उनके अनमोल धरोहर हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। रविंद्र जैन का संगीत न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के दिलों में भी जीवित रहेगा। आपका धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 10। आज का कार्यक्रम आधारित था संगीतकार रविंदर जैन पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, कार्यक्रम को लिखा, निर्देशन दिया और प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: ये शर्तें तो बड़ी है जरूरी, जो कोई करेगा इन्हें पूरी। मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा।
1: क्या?
0: यही है, यही है, यही तो है वो मीना मीना।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

आपने चुन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपुई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी, आपके मार्गदर्शन हेतु

इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अंबाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानो मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। कार्यक्रम रंगमंच की ओर में तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर सिर्फ रेडियो विस्ता FM 90.0 MHz।

जेन्युइन, कभी आपने सोचा है कि किरदार का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? कपड़े बदलने से, आवाज भारी करने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से? नहीं, आज हम बात करेंगे विजय आनंद साहब की एक खूबसूरत फिल्म गाइड की और समझेंगे कि एक अभिनेता रोल नहीं निभाता, वो एक जीवन जीता है। जी, इस फिल्म में देवानंद साहब का किरदार शुरुआत में थोड़ा हल्का है, चुस्त, आत्मविश्वासी और थोड़ा सा चालाक भी है। वो दुनिया को संभालता हुआ लगता है, लेकिन कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे उसके भीतर की जमीन खिसकती चली जाती है। यहीं से असली अभिनय उसकी शुरुआत होती है। ध्यान से देखिए, पहले हिस्से में देव साहब की चाल थोड़ी तेज है, बात करने की गति तेज है, आंखों में चमक है और अंतिम हिस्से में चाल धीमी हो जाती, शब्द कम हो जाते, आंखें स्थिर हो जाती, स्टेबल हो जाती। ये बदलाव अचानक नहीं आता है, ये एक भाव के साथ आता है। यही पहला सबक है। ट्रांसफॉर्मेशन अचानक से नहीं होता है, वो धीरे धीरे उतरता है। अगर आप एक ही दृश्य में पूरा परिवर्तन दिखा देंगे तो ये अभिनय लगेगा, जीवन नहीं। दूसरी बात, इस फिल्म का नायक परफेक्ट नहीं, वो गलती करता है, वो स्वार्थी है और वो महत्वाकांक्षी है, और यहीं पर अभिनय की परीक्षा होती है। जब आप किसी किरदार को गलत मान लेते हैं तो आप उसे निभाना नहीं, सही साबित करना शुरू कर देते हैं और यही अभिनय झूठा हो जाता है। गाइड हमें सिखाती है, किरदार को जज मत कीजिए, उसे समझिए, उसके भीतर का तर्क सोचिए। अब बात करते हैं आखिरी हिस्से, जहां किरदार एक आध्यात्मिक प्रतीक बन जाता है। ऐसे दृश्य अक्सर ओवर एक्ट हो जाते हैं, एक्टर ओवर एक्टिंग करने लगता है क्योंकि अभिनेता गंभीर दिखना चाहता है, लेकिन यहां देव साहब गंभीर देखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते, वो शांत हो जाते। और याद रखिए, शांति अभिनय का सबसे कठिन रूप है। जब आप स्थिर खड़े होते हैं तो कैमरा आपकी हर सोच पढ़ सकता है, इसलिए स्थिरता सिर्फ बाहरी नहीं हो सकती, वो भीतर से आनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, इस फिल्म का ग्राफ शुरुआत से अंत तक किरदार का भावात्मक तापमान बदलता रहता है। एक अभिनेता को पूरी कहानी का नक्शा दिमाग में रखना चाहिए, वरना हर दृश्य अलग अलग ऊर्जा में बिखर जाए। तो अब अभ्यास की बात की जाए, अभ्यास के लिए अपने किसी भी किरदार को लीजिए, उसकी शुरुआत लिखिए, उसका अंत लिखिए, फिर बीच के पांच पड़ाव तय कीजिए। यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। गाइड अंत में यह सवाल नहीं पूछती कि नायक संत था या धोखेबाज, वो पूछती है क्या मनुष्य बदल सकता है, और अभिनेता का असली सवाल यह है क्या वो हर किरदार के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि अभिनय नकल नहीं, वो परिवर्तन है। इस फिल्म को सिर्फ क्लासिक कहकर मत छोड़ना, उसे देखना और जरूर देखना और बार बार पॉज करके देखना और अपने भीतर के बदलाव को महसूस करना। अब कमेंट में लिखिए कि गाइड का कौन सा चरण आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, क्योंकि जो कठिन लगे वही आपकी असली ट्रेनिंग है। नहीं,

पर्वतों के पेड़ों पर शाम के साए हैं, कहीं से मौसम पिघलने की आहट है और खुशबू में सिमटी हैं धड़कने। रात भीगते भीगते गुजर गई तुम्हारे ही तसव्वुर में, रात भीगते भीगते गुजर गई तुम्हारे ही तसव्वुर में, पर मुड़ के नहीं देखा तुमने बीते मौसम की तरह, मुड़ के नहीं देखा तुमने बीते मौसम की तरह।

कोई अब इन रास्तों से गुजरता क्यों नहीं? सफर तवील होने के बावजूद तुम नजरों से ओझल होते गए और दूर इन सहराओं में आंधियां थी, गर्दो गुबार के जजीरों के सिवा कुछ नहीं नजर आया। फिर भी उम्मीद बंधी रही, शायद एक परछाई लिपट जाए मुख्तसर सी जिंदगी के साथ, सिर्फ एक बात करके।

क्या तुम आसमानों में रहते हो? इसीलिए शायद मेरी आरज़ूओं से खेलते हो, मेरी मासूमियत पर मुस्कुराते हो, क़यामत तक साथ निभाएंगे और हमारे तुम्हारे इन रिश्तों को मजबूत डोर से बांधेंगे। इन्हीं आसमानों में जा बसेंगे, बनाएंगे अपना आशियाना, पर यह हो न सका। खुद तो निकल गए और हमें यहां छोड़ आए इन तन्हा हवाओं के संग।

आसमानों में जा बसी हो, तितलियों के संग हवाओं में तैरती हो, परिंदों की उड़ान नाप लेते हो, सितारों को छू लेते हो। मोहब्बत बांटते हो और इन तैरते बादलों में गुम हो जाते हो। चुपचाप इशारों ही इशारों में समझाते हो, रूहानियत का फलसफा बयां करते हो और इन फिजाओं को अपने आंचल में ढक लेते हो।

दवाओं का असर अब रहा नहीं, वरना सजदों में खुदा को तलाशना क्या मुमकिन नहीं होता। सहमे सहमे बुझे बुझे से ये उदास चेहरे इबादत में मसरूफ, इन्हें ही रोशनियों का इंतजार, क्योंकि अब यह अंधेरों से निकल आए एक नए कारवां में शामिल होने के लिए।

तेज बहती धाराओं से गुजरकर इन रास्तों पे तुम मेरा एहसास हो। ख्वाहिशों की परवाज लिए बुलंदियों को छूना एक ख्वाब की तरह दिल में पलता रहा। काश हम तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें कोहसारों के उस पार ले जाते जहां मोहब्बतें रवा दवा है, जहां खुशबू है प्यार की और बदलते हैं मौसम पल भर में।

0: पर्वतों के पेड़ों पर शाम के साए हैं, कहीं से मौसम पिघलने की आहट है और खुशबू में सिमटी हैं धड़कने।
1: यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, निर्देशन भारत सोपोरी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। लेकर आई हूँ रेट्रो हिट्स का एक और नया अंक। इस अंक में आज हम बात करेंगे विश्वास की, और उसी पर आधारित आपको कुछ गाने भी सुनाएंगे। विश्वास। विश्वास है एक आईना, जो टूट जाए तो मुश्किल है जुड़ना। दिल से जो एक बार उतर जाए तो फिर मुश्किल है संभालना।

कौन हो। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की प्रस्तुत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: पेश है कार्यक्रम परिचर्चा। आज के मेहमान हैं कैसर सिस्टर्स, जरताज कैसर, जरनिगार कैसर और एहसास कैसर। प्रस्तुत करेंगे भरत सुपोरी।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज आपके लिए लाया हूं कार्यक्रम परिचर्चा। परिचर्चा में वैसे तो हम स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं मेहमान को, पर आज के इस कार्यक्रम में हम थोड़ा अम्बाला से दूर चलते हैं। आज हम चलते हैं दिल्ली, और आपको पता है कि अगर हम दिल्ली चलेंगे तो हम किसी टेलीफोन के या मोबाइल के माध्यम से जो हमारे सुनने वाले हैं उनको कनेक्ट करेंगे और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं मिलवा देता हूं जसवंत सिंह मल्होत्रा जी से। जसवंत सिंह मल्होत्रा जी दिल्ली में एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है फिलहार्मोनिक सिंगर्स फाउंडेशन न्यू दिल्ली, और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं जसवंत सिंह मल्होत्रा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के टाइम में जसवंत जी ने बहुत सारे बडिंग और अपकमिंग सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया और उसके साथ उनको एंगेज किया ताकि वो किसी परेशानी में ना रहे, अकेलेपन में ना रहे। और आइए आज हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में जसवंत सिंह मल्होत्रा जी का, जो इस समय हमसे जुड़े हैं दिल्ली से। जसवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो वितस्ता के इस स्टूडियो में।
2: भारत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।
1: नमस्कार।
2: मैं जसवंत सिंह मल्होत्रा मुखातिब हूँ
1: जी
2: आप सबसे।
1: जी जसवंत जी, आप हमसे कई साल से जुड़े हैं और आपके साथ जितने भी अपकमिंग और अच्छे सिंगर्स जुड़े हैं उनके हमने कुछ समय पहले लाइव शोज भी किए हैं, पर आज हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि जो रेडियो वितस्ता एक वेब रेडियो था, अब ये अपग्रेड होगी एक कम्युनिटी रेडियो, यानी FM स्टेशन बना है। हमारी फ्रीक्वेंसी है 90.0 MHz। तो आपको कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए।
2: मैं तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ
1: जी
2: रेडियो वितस्ता को FM रेडियो बनाने, 90 Hz का FM रेडियो बनाने के लिए, और सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस अच्छी चीज को सर अंजाम दिया। पर मैं ये कहूंगा कि रेडियो वितस्ता ने पिछले कई सालों में, 4 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं
1: जी,
2: हमारे हमारे जो बच्चे हैं फिलहार्मोनिक क्लब के, उनको अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स दिए, और आपके फेसबुक पेज के थ्रू ये बच्चे बड़े मशहूर भी हो गए हैं, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारी श्रोता ये जानना चाहते हैं कि आपके बारे में आप अपनी ही इंट्रोडक्शन खुद ही दे दीजिए।
2: मैं जसवंत सिंह मल्होत्रा, बेसिकली IIT BHU से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम किया और चीफ जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हो गया
1: जी।
2: क्योंकि गाना मेरा एक पैशन था, तो उसको मैंने अपने खाली समय को अच्छी तरह से प्रयोग करने का साधन पाया, और अपने पैशन को मैं पूरा कर रहा हूँ। लगभग 5 साल पहले मैंने फिलहार्मोनिक सिंगर्स क्लब का आगाज किया, शुरू किया। अब वो फिलहार्मोनिक ट्रस्ट में भी तब्दील हो गया है, जिसमें ट्रस्ट के थ्रू हम गाने के अलावा मैंने अच्छे अच्छे यंग और टैलेंटेड सिंगर्स को खोजा कोविड के दौरान, और उनको ट्रेनिंग उनकी बाकायदा शुरू करवाई, और अच्छे अच्छे बड़े शोज में हम लोग मिलकर दिल्ली में करते हैं, जिसमें हमारे जो सिंगर्स हैं, यंग चिल्ड्रेन हैं, टैलेंटेड चिल्ड्रेन हैं, उनको लोग अपने प्रोग्राम्स में मौका दे रहे हैं।
1: जसवंत सर, आप ये बताएं कि आप फिलहार्मोनिक क्लब तो चलाते ही हैं और इसके बगैर भी आप बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में उनके बारे में भी बता दीजिए।
2: कोविड जब हुआ दो वर्ष पहले, तो ये हाल हो गया था कि लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा था, जो डिस्ट्रीब्यूट थे, जिन लोगों को दिहाड़ी के मजदूर थे। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि जितने भी कोविड के मरीज हैं उनका, उनसे संपर्क किया जाए और उनके घर पे खाना पहुंचाया जाए।
1: बहुत अच्छी।
2: उसका कोई पैसा नहीं लेते थे हम लोग, उनके घर खाना पहुंचाया लगातार जब तक उनकी डिमांड थी। और साथ ही साथ हमने एक माँ की रसोई के नाम से एक लंगर शुरू किया।
1: जसवंत सर, आपके लिए और आपकी टीम के लिए आज आप इस जो हमारा ये कार्यक्रम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके लिए आज आपने किस सिंगर को चुना?

0: बताओ।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत सर। और मैं चाहूंगा कि अब हम जो हमारे आज के मेहमान है उनसे बात करेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: शुक्रिया जनाब।

0: आइए आज हम आप सबको मिलाते हैं कैसर सिस्टर्स से, और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं जरताज कैसर का। जरताज, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जरताज, आप मुझे ये बताइए कि आज कैसर सिस्टर्स में आपके साथ कौन कौन है?
1: आज मेरे साथ कैसर सिस्टर्स में मेरी दो छोटी बहनें हैं, एक है जरनिगार कैसर और एक है एहसास कैसर।
0: जी, मैं आप लोगों से एक लाइव शो में कुछ साल पहले मिला हूं, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम रेडियो पे आपका जो कार्यक्रम है वो सुन रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। जरताज, आप मुझे सबसे पहले, मुझे और हमारे जो श्रोता है उनको आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें।
1: जी, मेरा नाम जरताज कैसर है और मैं 17 साल की हूँ, और मैं दिल्ली में शोज वगैरह करती हूँ, और मैंने संस्कृत में भी काफ़ी प्लेबैक सिंगिंग कर रखी है, और मैं 2019 में गोल्डन वॉइस ऑफ दिल्ली NCR की विनर थी, और अभी रिसेंटली मैंने लखनऊ फिल्म क्लब के द्वारा एक गज़ल का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, तो मैं उसकी विनर रह चुकी हूँ 2022 में।
0: जरताज, आप संगीत सीखती हैं? अगर सीखती हैं तो कहाँ से सीखती हैं?
1: जी, मैं पंडित किशोर बैनर्जी से पिछले 6-7 साल से क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ, और अभी मैंने कुछ 2-3 महीने पहले गजल की तालीम लेना शुरू किया है।
0: मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गजल और जो हम गीत या कोई गाना गा लेते हैं, इन दोनों में खास अंतर क्या होता है?
1: अगर जैसे कोई बॉलीवुड सॉन्ग्स, मतलब गजल तो वो चीज़ हो गई जो मतलब उसमें बस शेर और शायरी वगैरह, और उसको बहुत ही मतलब आराम से गाया जाता है, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारी खुद की होती है, हमारी खुद की इनोवेशंस होती हैं, और बॉलीवुड सॉन्ग्स को वो थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है, मतलब गजल भी होती हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स में, बट वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ हो जाती है। गजल में हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, और हम अपने मतलब एक्सपेरिमेंट्स उसमें शो करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और उसके लिए मतलब क्लासिकल की तालीम होना भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात है, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से जरताज और आपकी दोनों बहनों जरनिगार और एहसास को। उनसे बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इन दो बहनों में से बड़ी हैं, तो एक तो आप रियाज करती हैं, तो क्या रियाज करते हुए जो आपकी छोटी सिस्टर एहसास है, क्या रियाज करते भी वो तंग आपको करती है कि नहीं करती है?
1: कभी कभी करती है।
0: तो आप क्यों ना ऐसा करें कि जब आप रियाज करते हैं उनको भी रियाज पे लगाएं, ताकि वो भी आपको तंग ना करें और रियाज भी हो जाए।
1: जी जी, हम लोग ज्यादातर तो यही करते हैं कि मतलब अगर मैं क्लासिकल का रियाज कर रही हूँ तो इसको दूसरे रूम में भेज देती हूँ, ताकि वो अपने बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह जो भी है उसकी प्रैक्टिस कर ले, और हमारा मतलब ऐसे ही होता है, एक साथ हम बहुत कम बैठते हैं। अगर हमें तीनों को एक साथ कोई रिकॉर्डिंग करनी हो या कुछ ऐसा गाना तैयार करना हो, हम तभी एक साथ बैठ के रियाज करते हैं।
0: जरताज, आप मुझे ये बताएं कि आप हमारे श्रोताओं को आज सबसे पहले क्या सुनाना चाहेंगे?
1: जी, मैं एक लता मंगेशकर जी की एक बहुत ही खूबसूरत गजल है, हम है मताए कोचा, वो सुनाना चाहती हूँ।

0: शुक्रिया।
1: बहुत खूब, बहुत खूब जरताज। और मैं देख रहा हूँ कि जब हम आप लोगों से एक शो में मिले थे, तब से आज तक आपकी आवाज बहुत निखर गई है। और जब आपने कहा कि आप गजल सीखना भी आपने शुरू कर दिया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी आवाज है उसके अलग अंदाज को आप समझ पाते हैं और आप उसको प्रस्तुत कर पाते हैं। जरताज, आपसे जानना चाहूंगा कि आप फिल हार्मोनिक ग्रुप के साथ जुड़े हैं, तो जसवंत सिंह मल्होत्रा जी का क्या रोल रहता है आप जैसे बडिंग और अपकमिंग कलाकारों के लिए, सिंगर्स के लिए?
0: जी, जसवंत अंकल का तो हमारे मतलब हमारे सिंगिंग करियर में काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने मतलब हमारे पहले उतने शोज़ वगैरह नहीं होते थे, पर जब से हमने वहाँ पे परफॉर्म वगैरह करना शुरू किया तो बाकी ऑर्गेनाइजर्स वगैरह आते थे सुनने के लिए, उनको हमारी आवाज़ पसंद आती थी तो वो हमें अपने शोज़ में इन्वाइट करते थे। और इससे मतलब हमारा मतलब काफ़ी ज़्यादा ये चेंज आया हमारे सिंगिंग करियर में, और वो मतलब हमें बहुत मतलब यूनिक यूनिक गाने जो मतलब किसी ने सुने भी नहीं है, इस टाइप के गाने हमें प्रिपेयर करने के लिए देते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: हम भी उनको इस चीज़ के लिए साधुवाद हमेशा देते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई भी व्यक्ति हमें हाथ पकड़ के आगे की तरफ ले जाता है और दुनिया के सामने ले आता है, तो सबसे अच्छी बात यही होती है। संगम कला ग्रुप के साथ भी आप जुड़े हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं।
0: जी, संगम कला ग्रुप में तो जब मैं फाइनलिस्ट थी तो ये कुछ 2-3 साल पहले की बात है, और इस साल तो मतलब हमने उसमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया, जो था मतलब 2-3 साल पहले ही था। जी, जर्नीगार ने पिछले साल इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वो संगम कला ग्रुप का जो दिल्ली स्टेट फाइनल था उसकी विनर बनी थी।
1: जरताज, आपकी उम्र में जो इस समय सिंगर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और उसके बाद कोई और जो आपका मनपसंद गीत हो वो आप हमें और हमारी श्रोताओं को सुनाएं।
0: जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत बचपन से सीखना शुरू किया था, जब मैं 5-5.5 साल की थी, तो मेरे बर्थडे पर ही मेरे पापा ने मेरा एडमिशन म्यूज़िक स्कूल में करवाया था एक, तो मैं तब से सीख रही हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, और मतलब खुद का एफर्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खुद नहीं चाहेंगे कुछ मतलब करना, तो मतलब कोई हमें कितना भी ये कर ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हमारा खुद का शौक होना चाहिए उसके लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस है और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, मैंने गज़ल सुनाई थी अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ नया सुना दो, कोई नया गाना।
1: हमारे श्रोता भी खुश हो जाएंगे आपकी आवाज़ में सुन के।
0: जी जी, तो मैं गुरु मूवी से एक बहुत ही फेमस गाना है माया माया, मैं वो सुनाने जा रही हूँ।
1: आप शुरू कीजिए।

एक सौदा रात का एक खौड़ी चांद की, चाहे तो चूम लेंगे तू थोड़ी चांद की। एक चांद की कश्ती में चल पार उतरना है, तू हल्के हल्के के ना दरिया ना चल के।

0: बहुत खूब
1: शुक्रिया।
0: बहुत खूब बहुत खूब जरताज। और मैं जरताज आपको पहले भी ये कहा कि आपको अपना रियाज करना है, अपनी जो तालीम है वो लेनी है, और साथ में आपको एहसास का और जरनिगार का ख्याल भी रखना है, क्योंकि आप बड़ी हैं तो आपके लिए जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। हमारी ओर से, रेडियो विद अस्था परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: आइए अब हम जरनिगार से बात करते हैं।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते जरनिगार, आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। और जब हमने शो किया था तब आप आज से थोड़ी छोटी थी, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है। कैसा लग रहा है आपको आज मेरे साथ इस रेडियो शो में बात करके?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया और बात करने का मौका दिया।
0: जर्नीगर में आप तीनों बहनों को हमेशा जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो मैं उसके साथ जुड़ता हूँ, और प्रभु करे आप तीनों बहनों को अपनी मेहर वो आपके ऊपर रखे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। सबसे पहले जर्नीगर मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं।
1: मैं जर्नीगर कैसर हूँ, दिल्ली से हूँ और मैं अभी 13 साल की हूँ। रिसेंटली अभी मैं संगम कला ग्रुप के दिल्ली स्टेट लेवल की फर्स्ट रनर अप बन चुकी हूँ और मैंने अपने स्कूल को भी स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है 3 कैटेगरीज में।
0: जी बहुत अच्छी बात है। और आप जो मैं देख रहा था आप फर्स्ट रनर अप खोज नए फनकार की भी हैं, तो कैसा लग रहा है कि जब आप एक समूह के सामने जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जब आपको गाना होता तो कैसे आप फोकस अपने गाने पे करते हैं?
1: कोई राज नहीं होता है, बस हमें सोचना, कॉन्फिडेंस पहले से हम लोग को भी प्रैक्टिस इतनी हो गई है गाते स्टेज पे कि हम लोग को अब उतना वो डर नहीं लगता और हम लोग नर्वस नहीं होते हम लोग।
0: okay.
1: तो प्रैक्टिस से हो जाता है।
0: और जो आपको इस समय FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर सुन रहे हैं, आप उनके लिए कौन सी पहली प्रस्तुति आज देना चाहेंगे?
1: मैं अभी आपको लता मंगेशकर जी के एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाने जा रही हूँ, नैनों में बजरा छाए।
0: जी शुरू कीजिए।

0: वाह
1: शुक्रिया,
0: वाह वाह वाह जरनिगार, बहुत अच्छे से आपने इस गाने को निभाया, क्योंकि जब कोई भी गाना लता मंगेशकर जी ने गाया हो तो उसको गाने के लिए मैं बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत आपके इस काम में दिख रही है। अच्छा, मैं आपसे एक अलग से सवाल करना चाहता हूँ। आपकी बड़ी बहन है जरताज और छोटी है एहसास, आपको सबसे ज्यादा तंग घर में कौन करती है, जरताज या एहसास?
1: एहसास।
0: अच्छा, एहसास वो रियाज भी करती है और आप दोनों को तंग भी करती हैं?
1: जी, दोनों ही करती हैं।
0: तो क्या आप उनको डांट लगाती हो या प्यार से समझाती हो?
1: डांट लगाती हूँ लेकिन वो सुनती नहीं है, फिर भी तंग करती है।
0: चलिए, अभी हम एहसास के साथ भी बात करेंगे, बट पहले अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि जैसे एक बच्चा सपोज सिंगिंग में वो जाना चाहता है, उनके उस काम में एक सिंगर, अच्छा सिंगर बनने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो आप अपने माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, और मतलब जो चीज हमें चाहिए उसके लिए हम लोग, उनने कभी मना नहीं किया, और म्यूजिक के फील्ड में हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं हमें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं कर पाते सब, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने हम लोग के लिए सब कुछ किया।
0: बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे भी कहा जाता है कि हमारे जो बड़े जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे माँ और हमारे पिता होते हैं, और मैं ये जरूर चाहता हूँ, हर एक बच्चे को यही कहता हूँ कि जब तक हम भगवान को, अल्लाह को, किसी को भी हम देखें, उससे पहले हम अपने माता पिता को देखते हैं, और उनकी इज्जत और उनका सहारा हमेशा हर एक बच्चे को मिलता रहे, और इसके लिए हम अपने ओर से आप सबको शुभकामनाएं देते हैं।

0: हेलो नमस्ते एहसास, कैसे आप? कैसी हैं?
1: नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। और हमारे जो सुनने वाले हैं वो बहुत उतावले हो रहे हैं एहसास को सुनने के लिए। वैसे तो हमने उनको बोला है कि हम एहसास से बात करेंगे, बट आपका नाम है एहसास कैसर। जितनी एहसास बड़ी है, नाम उससे बड़ा नहीं लग रहा, या अब एहसास बड़ी हो गई है?
1: मैं बड़ी हो गई हूँ।
0: मैंने आपका एक गाना देखा है जो आपने जसवंत अंकल के साथ गाया था, और आपने काली स्पेक्स पहनी थी। वाह वाह, क्या कमाल का गाना था वो। और शरारतें कौन करता है आपके घर में, जरताज या जरनिगार?
1: अगर ज्यादा शरारती की बात हो तो मैं ही करती हूँ, लेकिन दोनों में से जरताज को कह सकते।
0: चलो अच्छा, ये बताओ कि जब जरताज और जरनिगार घर में रियाज करते हैं, तो क्या आप गौर से और ध्यान से उनको रियाज को देखते हैं, सुनते हैं?
1: मैं ज्यादातर सुनती हूँ, बाकी कभी कभी शरारती करते हूँ।
0: जो बच्चा शरारत नहीं करेगा वो बच्चा कैसा हो गया? तो इसलिए एहसास शरारतें बरकरार रखनी है, पर जब रियाज करना है तब जो फोकस है वो रियाज पे करना है। और आपके बारे में जो मेरे पास जानकारी है, बहुत सारे काम आपने किए हैं, बहुत सारे शोज आपने किए हैं, तो हमारे रेडियो विदस्ता के सुनने वालों को आप सबसे पहले क्या सुनाएंगे?
1: मैं आशा भोसले जी का एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगी, सत्तूबा।
0: हाँ, आप शुरू कीजिए।

0: बहुत खूब एहसास, बहुत खूब एहसास। वाकई आपने कहा कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, तो 9 साल की एहसास कैसर वाकई बड़ी हो गई। इतना मुश्किल गाना आपने लिया और आपने बखूबी उसको पेश किया हमारे श्रोताओं के लिए। अच्छा मुझे एहसास एक बात बताओ, जब आप स्कूल जाती हैं, आपके वहाँ पर जो दोस्त हैं, क्या आपके दोस्त आपको स्कूल में भी कहते हैं कि एहसास कोई गाना सुनाओ?
1: कभी कभी कहते हैं।
0: और आप सुना भी देते हो?
1: हाँ।
0: अच्छी बात है, क्योंकि एक कलाकार जो होता है उसके लिए कोई स्टेज की जरूरत नहीं होती है, जहाँ पर वो कलाकार है वहीं से स्टेज की शुरुआत होती है। ठीक है बेटा
1: जी।
0: अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जिंदगी में आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ तक पहुँचना है आपने?
1: मेरा ये लक्ष्य है कि मैं जब मैं बहुत बड़ी स्टार बनूं और सब लोग मुझे मेरे गाने से, मेरे आवाज से पहचाने।
0: और अगर उस समय जब मैं आपके सामने आऊं तो क्या मुझे आपको मिलने का मौका मिलेगा जब आप बहुत बड़ी स्टार बनी होंगी?
1: जी जरूर।
0: मैं ये चाहूंगा कि अब आप तीनों बहनें साथ आएं और मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के समापन पर हम तीनों बहनों से एक गाना सुने। उससे पहले एहसास मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप मम्मी पापा को क्या कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से?
1: मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा बचपन से ही बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा है कि तुमको जो भी करना है तुम कर सकती हो, अगर किसी दूसरे फील्ड में जाना है तो उसमें भी कर सकती हो। और उन्होंने कहा है कि जो भी तुम्हें म्यूजिकल चीजें खरीदनी हो वो हमें बताना, हम लोग थोड़ा सा भी लेट नहीं करेंगे। और हमेशा हमारी बहुत मदद की है, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मेरे पापा भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है।
0: हमारी ओर से, रेडियो विकसता परिवार की ओर से आप तीनों बहनों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि जरनिगार और जरताज भी अब आपके साथ ज्वाइन करें। जरताज आप मुझे ये बताएं कि इस छोटे से कार्यक्रम में अंतिम दौर में आप तीनों बहनें हमें और हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना पसंद करेंगी?
2: हम अभी आपको एक ट्रिपलेट सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं, देखो मौसम क्या बाहर है।
0: शुरू कीजिए।

0: शुक्रिया।
1: वाह वाह, आप लोगों ने तो मौसम ही बदल दिया, जैसे हम कहते हैं कि जरताज जरनिगार एहसास, आपने तो मौसम बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, और इस कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करता हूं। और हमारी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, FM 90.0 MHz की ओर से, आप तीनों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका करियर ऐसे ही चलता रहे, आपकी आवाज ऐसे ही खुशनुमा होती रहे और लोगों को एंटरटेन करते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: जी
2: शुक्रिया,
0: नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिचर्चा। आज के मेहमान थे कैसर सिस्टर्स, जरताज कैसर, जरनिगार कैसर और एहसास कैसर। रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार। निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सुपोरी।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विविधता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विविधता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेरी निगरानी में रेडियो विविधता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विविधता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विविधता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हमसफर जिंदगी का।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मेहरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली

0: साथ तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: हमको मेरे नहीं मांगता, हमको लेले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहे।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: दिलों में उल्फत जुबान पर मिठास रखते हैं, हम नफरत नहीं मोहब्बत का एहसास रखते हैं, और यूं तो बजते हैं धुन और नगमे हर तरफ, मगर हम गानों से दिलों को दिलों से जोड़ने का अंदाज रखते हैं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, और मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी,
1: और भारत जी के साथ मैं हूँ आपके हम सफर RJ किरणी। हमारे तमाम प्यारे प्यारे श्रोताओं को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने, रेडियो वितस्ता सिर्फ गाने नहीं बजाता, बल्कि ये एक जरिया है आपकी यादों को, आपके जज्बातों को और आप सभी के दिलों को आपस में जोड़ने का। और इसी खूबसूरत मोड़ पर स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो आपकी फरमाइश में।
0: बिल्कुल किरणी, और आज का ये सफर बेहद खास है, लेकिन गानों के सिलसिले को शुरू करने से पहले अपने सभी चाहने वालों को एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प जानकारी दे दें। दोस्तों, आज के इस लाइव शो के बाद अगले दो हफ्ते तक हम कोई नई फरमाइश शामिल नहीं कर पाएंगे।
1: अरे अरे, उदास मत होइए, क्योंकि वजह बेहद खूबसूरत है। दरअसल अगले दो हफ्तों के लिए हम अपने आर्काइव्स के खजाने से आपके लिए लेकर आ रहे हैं पुराने रिकॉर्डेड फरमाइशी गीतों के वो सदाबहार कार्यक्रम जिन्हें आपने कभी बेहद प्यार दिया था। यानी अगले दो हफ्ते आपको मौका मिलेगा उन पुरानी खूबसूरत यादों और फरमाइशों को एक बार फिर से जीने का और उन्हें दोबारा सुनने का।
0: क्या बात है, यानी यादों का कारवां दुगना होने वाला है। और हाँ, नोट कर लीजिए कि हमारा अगला बिल्कुल नया कार्यक्रम शुक्रवार 31 जुलाई को प्रसारित होगा, और बीच में दो हफ्ते आप आर्काइव से हमारे पुराने कार्यक्रम सुनेंगे। तब तक आप आराम से अपनी मनपसंद फरमाइशें हमें भेजते रहिए, ताकि 31 जुलाई को हम एक नए जोश के साथ आपकी नई फरमाइशों को पूरा कर सकें।
1: तो आइए सुनते हैं आपके पसंदीदा गीत, आपकी भेजी हुई फरमाइशें और उनसे जुड़ी प्यारी सी बातें। तो देर किस बात की, बढ़ाते हैं पहला कदम सुरों की इस खूबसूरत महफिल की ओर। पेश है आज का पहला नगमा आपकी ही फरमाइश पर। तो पेश है इस कार्यक्रम की पहली फरमाइश, जो हमारे पास आई है गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से। भेजने वाले श्रोता है सईद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सदाम और आदिब। इन्होंने जिस गाने की फरमाइश की है वो है फिल्म दिल ने फिर याद किया से। इस गाने के बोल है कलियों ने घूंघट खोले, और इस गाने को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। लीजिए पेश है आपकी फरमाइश का ये गीत।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता है विनय मोहन खारवन। ये सुनना चाहते हैं फिल्म हम दोनों से गीत। गीत के बोल है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। विनय मोहन खारवन के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है मीनाक्षी पलोमा व डॉक्टर ईशानी। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

अब बारी है आपकी फरमाइश के अगले गीत की, जो आई है हमारे पास नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर। साथ ही यही फरमाइश आई है मलकापुर महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुढ़ेकर। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म आम मिलो सजना का गीत। गीत के बोल है पलट मेरी जान, और इस खूबसूरत गीत को अपनी सुरीली आवाज से सजाया है आशा भोसले ने। तो पेश है ये प्यारा सा नगमा।

आपकी फरमाइशों का सिलसिला यूं ही जारी है। पेश है फिल्म शालीमार का गीत, जिसके बोल है हम बेवफा हरगिज न थे। इस गाने को आवाज दी है किशोर कुमार ने और इस गाने को भेजने वाले श्रोता हैं राजीव, वैशाली, मिन्नी, विराज और ये फरमाइश हमारे पास आई है कलकत्ता से। लीजिए पेश है इनका फरमाइशी गीत।

आप सभी की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंड तेजामोड़ी अम्बाला से, भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधू। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधू, जसबीर सिंह संधू, वरनीत कौर, पवनीत कौर संधू और सारा संधू परिवार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म मेरा गांव मेरा देश से गीत। गीत के बोल है मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

अगला फरमाइशी गीत है फिल्म यलगार से। इस गाने के बोल है आखिर तुम्हें आना ही है, और इस गाने को अपनी मधुर आवाज से सजाया है उदित नारायण और सपना मुखर्जी ने। और ये फरमाइश हमारे पास आई है दयाल बाग अम्बाला कैंट से, और भेजने वाले श्रोता है हनी और अनिल। लीजिए पेश है इनका।

अगली फरमाइश हम आपको सुनाते हैं फिल्म अखियों के झरोखों से। गीत के बोल है अखियों के झरोखों से। इस गीत को आवाज दी है हेमलता जी ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है अमल अस्टी से और भेजने वाले श्रोता है शगुन गोडिया। शगुन के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं सिनेहा। आइए प्रस्तुत है इनका ये पसंदीदा नगमा।

अगला फरमाइशी गीत है आया सावन झूमके फिल्म से। गाने के बोल है आया सावन झूमके। इस गाने को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने और ये फरमाइश हमारे पास आई है मुंबई से। भेजने वाले श्रोता है रीना, मोहित, काजल, अमित, मोनिका और राज। लीजिए पेश है इन सब का पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप भी इस फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। आपको लिखना होगा फिल्म का नाम, गीत के बोल और अपना नाम और आप कहां से लिख रहे हैं। अगर आपके साथ अपने दोस्त या रिश्तेदार ये गीत सुनना चाहते हैं, आप उनके भी नाम स्पष्ट लिखें। ध्यान रहे कि आप किसी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत की ही फरमाइश करें या हरियाणवी या पंजाबी गीत की। तो हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इसके साथ ही लेते हैं आज के कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश जो हमारे पास आई है बेंगलोर से। भेजने वाले श्रोता है प्रेरणा, अंशुमन, रेखा, हेमा, मोहन, बहादुर और संगीता। ये सुनना चाहते हैं फिल्म मंजिल से गीत। गीत के बोल है रिमझिम गिरे सावन। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने। उम्मीद करते हैं आपने आज के इस फरमाइशी गीतों के सफर को पसंद किया होगा। आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजे। इसके साथ ही हम आपको इस गाने के साथ छोड़े चले जा रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार।
1: अब मुझे भी दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपकी नई नई फरमाइशों और सुनहरी गीतों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर। नमस्कार। जय हिंद।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: कोड 13010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
2: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: जी हाँ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भारत सोपुरी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला से जो प्रसारण करता है, वहां से मैं आप सभी से लाइव हूँ और स्वागत करता हूँ प्रीतम जी का और साथ में गुरबिंदर जी का भी और साथ आज के मेहमान का भी स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता इस शो को देखते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और साथ में हमारे सामुदायिक रेडियो से जो लाइव इसको सुनते हैं, उन सभी का स्वागत और अभिनंदन। और आप ये कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन 4 बजे से 5 बजे तक सुनते हैं और इस समय आज शुक्रवार है 10 जुलाई 2026 और आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी है और 2083 विक्रम संवत। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आप सभी खुश हैं और एक बार फिर सभी का अभिनंदन। प्रीतम जी, आप कैसे हैं?
1: नमस्कार सभी श्रोता, भारत जी सभी को नमस्कार। बढ़िया हूँ भारत जी मैं, और दादरी में मौसम भी बढ़िया है।
0: विस्तार से बताइए प्रीतम जी।
1: भारत जी मौसम भी बढ़िया है, कभी धूप कभी छाओ, ऐसे लुका छुपी का खेल चला हुआ है। और अरे दादरी में आज कल हमारे जिला उपायुक्त ने एक पहल की है कि लोगों को जागरूकता अभियान चलाना है, प्लास्टिक हमने यूज नहीं करना
0: जी।
1: जो प्लास्टिक है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत जी एक ऐसी घटना हुई है, जो शिविर होते हैं
0: जी,
1: उसमें लोगों के जो गुदड़ी होते हैं, सोड होते हैं, वो भी मिले हैं।
0: ठीक।
1: उससे क्या होता है, शिविर जाम हो जाते हैं
0: जी जी।
1: तो मैं सभी रेडियो के श्रोताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करें, और करें तो शिविरों में ना डालें। वो हर शहर की समस्या है, हर जगह की समस्या है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक को शिविर में डालोगे तो वो चौक हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, जिससे जल भराव का एक कारण हो सकता।
0: आपने बहुत ही
1: और हमारे
0: जी जी जी जी
1: हाँ जी भारत
0: कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए सर।
1: और हमारे साथ सरपंच जी भी जुड़े हुए हैं। आज सरपंच जी के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना था और आज जो कुछ है वो सरपंच जी के मुख से सुनेंगे। इन्होंने इनके जो विकास कार्य किए हैं उनकी प्रेरणा कहाँ से लिए और इतने अच्छे कार्य कहाँ से किए। और आज तो सर हमारे साथ सरपंच साहब के साथ साथ मनीष जी भी जुड़े हुए हैं अरावली रेडियो से दो। तो एक तो मनीष जी का भी हमें तो बहुत बहुत स्वागत करना पड़ेगा, क्योंकि मनीष जी काफी दिनों बाद जुड़े हैं। तो मनीष जी ये गैरहाजिरी का भी आपको फाइन लगेगा, एक दिन जब पूरी मीटिंग होगी उसमें आपको दंड दिया जाएगा।
0: दंड दिया जाएगा
2: जी जी जी प्रीतम जी,
0: मनीष जी दंड दिया जाएगा
2: जी जी भरत जी।
0: इस चीज का ध्यान रखिएगा
2: जी। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: बड़ा अच्छा।
2: और सभी साथियों को राम राम। गुरविंदर जी जैसा दिख रहे हैं, गुरविंदर जी को भी सादर राम राम। ठीक तो कार्यक्रम को सुचारू रूप से शामिल करेंगे। आज हमारे पड़ोसी हमारे क्षेत्र से नीरपुर राजपूत से सरपंच साहब जुड़े हुए हैं
0: जी जी।
2: तो इसलिए मुझे भी आज जैसे ही सूचना मिली तो सोचे कि भाई आज तो जरूर जुड़ेंगे। भरत जी के भी दर्शन हुए, प्रीतम जी के भी दर्शन हो रहे हैं। और ये
0: मनीष जी
2: स्टूडियो से कनेक्टिविटी कम हो रही
0: है जी, आपकी जो आवाज है थोड़ी सी कम कर दीजिए, बहुत तेज आवाज आ रही है आपकी। वैसे ही आवाज आपकी बुलंद है।
2: नहीं, कार्यक्रम को आप चालू कीजिए। अब आवाज तो अब तो हम हमारे अतिथि की सुनेंगे, आज गुरविंदर जी की सुनेंगे,
0: चलिए
2: प्रीतम जी और आपकी सुनेंगे।
0: चलिए मनीष
2: जी कार्यक्रम को चालू कीजिए।
0: मनीष जी आपका स्वागत है और मैडम आपके स्टूडियो से जुड़ी है उनका भी स्वागत है। प्रीतम जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय आज टच किया, वो है प्लास्टिक का यूज हमें नहीं करना चाहिए। जब हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद करें, हमें घर से थैला लेके जाना होगा, तब जाके हम अपनी सब्जी या जो भी हमने इत्यादि सामान लाना है हम उस पर लाएंगे, तो हम अपने घर प्लास्टिक का लिफाफा नहीं लाएंगे। जब हम उसको ले आते हैं वो ऑटोमेटिकली हर जगह पर पहुंच जाता है और जहां पर हमारे जो पशु है वो भी उसको खाना समझ के खा लेते हैं, तो उनकी भी कई बार उससे मृत्यु हो जाती है। तो हमें घर से ही एक बैग लेना होगा, तब जाके हम प्लास्टिक से अपने आप को प्लास्टिक रहित हम अपने जीवन को जी सकेंगे। खैर ये इस विषय पर भी हम किसी दिन जरूर बात करेंगे। और आज के मेहमान से बात करेंगे और मनीष जी भी सुनने के लिए आतुर है आज के मेहमान से। गुरबिंदर जी को कहूंगा थोड़ा सा उनका परिचय दें और उसके बाद हम आज के मेहमान से बात करेंगे। जी
3: राम राम। हरियाणा के प्रसारण में जुड़े सभी श्रोता और हमारे पैनल में जुड़े सभी मेहमानों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज दोपहर के इंते आके इस प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये हम एक पंचायतों को मार्गदर्शक देने के लिए मतलब शुरू किया हुआ है, ताकि हमारी जो पंचायतें हैं वो विकास के लिए अग्रसर हो सकें। उसी कड़ी में आज हमारी एक जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायत है मीरपुर राजपूत, मीरपुर कई है इसीलिए इसको राजपूत के साथ मतलब रेटिफाई करते हैं, मीरपुर राजपूत जे अटेली नांगड़ जो हमारा विकास खंड है और जिला महेंद्रगढ़ की ग्राम पंचायत है, वहां से हमारे सरपंच साहब है श्री रतनपाल सिंह चौहान जी, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं इनका इस प्रोग्राम में बड़े थोड़े समय के नोट्स पे जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से भी और हमारे जो पैनल में जुड़े सभी मेहमानों की तरफ से। तो इन्होंने हमें अपना जो समय है वो दिया है। तो ये वैसे इंजीनियर है, पेशे से बीटेक है और इन्होंने अपने गांव के लिए काफी अच्छे कार्य किए हैं, जैसे स्पोर्ट्स में ज्यादा इनका योगदान रहा है। इन्होंने अपने गांव में डे एंड नाइट क्रिकेट स्टेडियम और दूसरा एक सिंथेटिक ट्रैक, बाकी जो नशों की आजकल बड़ी बुरी लत हमारे समाज में पाई जा रही है उसके लिए भी इन्होंने काफी अवेयरनेस कैंप हमारे अपने गांव में मतलब ऑर्गेनाइज किए हैं लोगों को अवेयर करने के लिए नशों के जो बुरे बुरे प्रभाव हैं उनसे। तो वैसे भी जो एक युवा सरपंच हैं हमें रतनपाल जी जैसे सरपंचों की बड़ी जरूरत है, ताकि हम हरियाणा को 80 दिशा में लेके जा सकें, विकास की और लेके जा सकें। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ तो एक बार फिर मैं रतनपाल जी का जहां स्टूडियो में हमारे साथ हाजिर होने के लिए धन्यवाद करता हूं। तो और गुजारिश करता हूं कि ये अपने जो विकास की कहानी है जो मीरपुर राजपूत को इन्होंने इस मकाम पे लेके गए, जहां तक लाने के लिए इनको क्या दिक्कतों या क्या मतलब जो प्रॉब्लम इनको सामना करनी पड़ी और जो इनकी उपलब्धियां हैं और जो आगे इन फ्यूचर में या भविष्य में जो करने वाले हैं उनके बारे में बताए श्री रतनपाल सिंह जी। हाँ
0: जी रतनपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसे आपके गांव के बारे में बताया गया, आप हरियाणा के एक छोर पर है और आप बहुत सारे सामुदायिक रेडियोज पर आपकी आवाज इस समय लाइव जा रही है। आप इस समय अम्बाला छावनी से जो प्रसारित होने वाला रेडियो वितस्ता FM 90 है वहां से भी आपकी लाइव जा रही है आवाज। मुझे खुद अटेली जाने का मौका मिला है कुछ समय पहले और मैं उस एरिया से वाकिफ हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप का जो ये जो आज का कार्यक्रम है उसमें आज आप हमारे मेहमान हैं, तो आप विस्तार से आप अपने गांव के बारे में, अपने काम के बारे में, आपके सोच के बारे में, आपने इन्होंने कहा कि आपने बीटेक किया है, आप एजुकेटेड है, युवा है, किस तरीके से हमारे देश को युवा सरपंचों की जरूरत है, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं वो आपकी काम से, आपकी बात से प्रेरित हो, यही हमारा मकसद है। आपके बारे में जानेंगे, कुछ प्रश्न भी करेंगे। सबसे पहले हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, अपने परिचय के साथ आप अपने गांव के बारे में बताएं, जहां जरूरत होगी हम हो सकता है कि हाथ उठाएं ताकि आप हमारे सवालों के जवाब भी दें। और हमारे पास इस कार्यक्रम में कॉल्स भी आते हैं, मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि आप कॉल करें 8816-904-904 पर, ताकि आज के हमारे सरपंच मेहमान से आप सवाल भी कर सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं और उत्तर भी पा सकते हैं। तो अब माइक आपकी ओर है, तो आप अपने परिचय के साथ शुरू करें। जी
4: पहले तो सभी को राम राम।
0: जी राम
4: राम। मैं बड़ा ही धन्यवाद करता हूँ आप सभी श्रोताओं का और आप सभी पूरी टीम का, एफएम टीम का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे लोगों को आप आगे फ्रंट पे लेके आते हैं जो रियल में ग्राउंड पे मेहनत करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और गुरविंदर जी का सुबह ही मेरे को कॉल आया था कि ऐसे ऐसे आपको लाइव है और एफएम पे आपको आना है वहाँ पे, तो उसके लिए मैं पहले तो सभी का धन्यवाद और सभी श्रोताओं का मेरी राम राम है। फिर से मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं रतनपाल सिंह चौहान, गांव नीरपुर राजपूत, खंड अटेली और जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से हूँ। मैंने सर, जब मैं 2022 में सरपंच बना था तो मैंने सरपंच बनने से पहले हमने एक पूरी टीम बनाई। पूरी टीम बनाने से पहले हमने डिसाइड किया था कि भाई पूरी टीम में सबसे बेस्ट कौन हो सकता है। हमारे हम सात आठ हमारे दोस्त थे, कुछ परिवार के मेंबर्स थे, तो उन्होंने टीम बनाई। तो ठीक है भाई, रतनपाल इलेक्शन लड़ेगा, इसको हम सरपंच जी का इलेक्शन लड़ाते हैं, क्योंकि ताकि गांव में क्या है कि सर बहुत ही मतलब विकास नहीं हो पा रहा था। गांव में विकास की रफ्तार एकदम थम सी गई थी और कहीं ना कहीं हमारा जो साउथ हरियाणा है इधर नशा भी पनप रहा था धीरे धीरे। तो हमने यही डिसाइड किया कि भाई हमारे गांव में भी वो नशा वगैरह आ रहा है, यूथ उस चीज में काम नहीं कर रहा है अभी, जिस चीज में जैसे स्टडी होगी या फिर अपना गेम की तरफ फोकस नहीं था, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी हमारे यहाँ पे यूथ को। तो यही सोच के सर सरपंच जी का इलेक्शन लड़ा। पहले तो परिवार को मनाना बड़ा ही डिफिकल्ट था, परिवार एग्री नहीं हो रहा था, पेरेंट्स एग्री नहीं थे कि भाई सरपंच जी लड़नी है, बोल रही थी कि खराब चीज है, इनसे जब दूर रहे, अच्छी जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब फोकस कर। बट एक जुनून सर पे था कुछ अच्छा करने का सर, तो सरपंच जी का चुनाव लड़ा, हम जीत गए। जीतने के बाद सर हमने डिसाइड किया कि हमारा मैनिफेस्टो क्या क्या रहेगा, कि हम सबसे पहले किस चीज पे काम करना है। तो सर हमने उस मैनिफेस्टो में हमने कम से कम 22-23 काम हमने लिए थे कि ज्यादा काम हमें नहीं लेने, ताकि लिस्ट ज्यादा बन जाए काम होना, तो वो भी सर सही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यूथ के ऊपर काम करना था कि यूथ अगर सुधरता है तो ऑटोमेटिक अपने देश का भविष्य भी सुधरता है। तो यही दिमाग में सर एक चीज थी। तो सबसे पहले हमने एक कंपनी से कॉन्टेक्ट किया, मैं भी इंजीनियर था कंपनी में, बड़े भाई साहब हमारे वो भी सुजुकी में पर्चे जैड वगैरह काफी अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया। तो हमने सोचा कि फंड्स कहाँ से लेके आए, इन सब चीजों के लिए फंड्स चाहिए होता है सर, क्योंकि मेरा गांव आपको बताता हूँ 600 वोट का गांव है मेरा, ओनली 600 वोट है, बहुत ही छोटा गांव है मेरा। जब भी ईयरली 7-8-9 लाख रुपए 10 लाख रुपए के आसपास टोटल बजट आता है, उसमें आप मोटर्स का मेंटेनेंस की चीजें हो जाती हैं, एक सड़क भी कम्प्लीटली सर बड़ी सड़क आप बनाएंगे तो भी सर 5-6 लाख रुपए चले जाते हैं, तो फंड्स की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो सर हमने लगाया, एक बावल में कंपनी है, वैनफैंग कंपनी है, उससे कॉन्टेक्ट किया, बात बात की, तो हमने पहला CSR फंड वहीं से लिया। हमने उनसे बात बात करके सर CSR फंड से काम करवाया, ग्राउंड बनवाया, सबसे पहले हमने यही काम किया, ग्राउंड बनवाया, हमारी टीम ने बनके मिलके उनके साथ मेहनत की और हमने सबसे पहले ग्राउंड बनवाया। ग्राउंड में सर ग्रासी ग्राउंड है और जो अभी अरुण जेटली स्टेडियम है दिल्ली में, जहाँ की वो मिट्टी यूज होती है इधर मेवात साइड की, काली मिट्टी की पीछे है वहाँ पे। और फिर ये सब चीज होने के बाद फिर सर हमने सोचा कि एक यूनिक क्यों ना किया जाए कि कुछ मतलब स्टेडियम आप देखेंगे सर पंचायती लैंड पे बहुत ही कम स्टेडियम मिलेंगे। मेरे ख्याल से हरियाणा का पहला स्टेडियम था जो पंचायती लैंड पे CSR फंड से द्वारा हमें बनाया गया, हरियाणा का पहला स्टेडियम है सर हमारा। और वैसे इंडिविजुअल आपको गुड़गांव वगैरह में NCR में काफी स्टेडियम्स मिल जाएंगे जो खेल की फैसिलिटी देते हैं, बट ऐसा कोई स्टेडियम था नहीं। तो फिर हमने सर सोचा कि लाइट्स लगनी चाहिए, डे नाइट की फैसिलिटी यहाँ के इसको जो स्पोर्ट्स के लिए जो यूथ है उसको मिलनी चाहिए। तो सर दूसरी कंपनी से कॉन्टेक्ट किया, इंडिया जापान लिमिटेड, उनसे उन्होंने हमारा CSR फंड में हेल्प की और उन्होंने पूरे ग्राउंड में लाइट्स वगैरह का हमें फंड देके स्टेडियम में लाइट लगवाई। तो सर हमारा कंप्लीट एक पहला स्टेप था वो हमने कम्प्लीटली अचीव कर लिया था। आफ्टर सम टाइम हमने डिसाइड किया कि हम हमारे गांव गांव के बच्चे खेलते थे, वहां पे 2 टीमें थी हमारी, ऐसे खेलना शुरू किया, क्रिकेट खेलना, फिर साथ में फुटबॉल वॉलीबॉल ऐसे, तो सिर्फ हमारे गांव तक सीमित थे हम। फिर हमने थोड़ा सा विचार किया हमारी पूरी टीम ने कि भाई हम क्यों ना आसपास के यूथ के लिए भी इसको खोला जाए, क्योंकि सिर्फ एक मेरे गांव तक ये चीजें सीमित ना रहे, आसपास का यूथ भी इस चीज का फायदा उठाए। तो सर आपको बताते हुए खुशी होगी कि आज के दिन 90 गांव के यूथ मेरे गांव में खेलने की सुविधा के लिए फायदा उठा रहे हैं। मैंने ये चीज अपने गांव तक सीमित नहीं रखी, आप राजस्थान के जयपुर तक के प्लेयर हमारे यहाँ पे खेलने आते हैं, इधर गुड़गांव दिल्ली तक के, और आसपास के जो नारनौल के बॉर्डर के पास है, जो मनीष जी को पता है इस चीज का शायद, कि आसपास के सिंघाना साइड के, झुंझुनू साइड के काफी यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने एक क्लब बनाया है सर।
0: भरतपुर से भी आते होंगे, भरतपुर भी नजदीकी है, नांगल चौधरी है,
4: नांगल चौधरी आता
2: है, नांगल बहुत दूर रह जाते हैं, नांगल चौधरी। बाकी राजस्थान से भी काफी बच्चे अब की बार मैराथन में आए थे
0: जी,
4: मैराथन
2: में बहुत दूर दूर से मैराथन में बच्चों ने ज्वाइन किया है।
4: मैं मैराथन के बारे में भी बताऊंगा, मैं थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। तो वो चीजें हमने की सर, हमने एक क्लब बनाया एकेएम राइज क्लब। तो क्लब के थ्रू हमने चीजें स्टार्ट की। हमने फिर मैं आज तक महेंद्रगढ़ में मैराथन नहीं हुई थी, मैराथन का नाम तक मेरे ख्याल से कोई जानता नहीं था। तो हमने मैराथन पहली हाफ मैराथन महेंद्रगढ़ जिले में हम ही लेके आए, हमारी ग्राम पंचायत और क्लब ने मिलकर हाफ मैराथन का आयोजन किया। हमने हाफ मैराथन करा चुके हैं जिनमें नेशनल लेवल के जो धावक हैं वो दौड़ते हैं, आउट ऑफ इंडिया के भी धावक साउथ अफ्रीकन वगैरह भी काफी आए थे, वो भी दौड़े थे। तो जबरदस्त था, अब की बार लगभग 4 से 5 हजार पब्लिक की गैदरिंग थी, जो अभी हमारी मार्च में खत्म हुई है एक हाफ मैराथन वो कराई थी हमने, अब की बार हमारे गांव में कराई थी। तो वो भी एक इवेंट है।
0: उस मैराथन का जो टॉपिक था, जो
4: मकसद
0: था, वो क्या था?
4: मैं बताता हूं
0: जी
4: सर, हमने हमने तीन मैराथन
2: के लिए पहले अरावली रन फॉर अरावली,
4: यस यस, पहले पहले इस वाले का रन फॉर अरावली था, एंड उससे पहले की थी ग्रीनरी के ऊपर था, जो प्रकृति को जो पेड़ बचाओ के ऊपर था, और जो सेकंड थी वो थी सर नशा मुक्त हरियाणा के ऊपर थी, नशा मुक्त महेंद्रगढ़ का। तो हमने तीनों पे पहले ग्रीनरी पे काम किया, उसके बाद नशे मुक्त पे काम किया, उसके बाद रन फॉर अरावली किया था हमने, अरावली को बचाने के लिए। तो ये चीजें सर हमने की थी। तो अभी आज के टाइम पे हमने अलग अलग जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में या कैसे काम होते हैं उस तरीके से हम काम करते हैं, हमारे पास टीम में अलग अलग, मैं जैसे सरपंच हूँ तो मैं फाइनल डिसीजन मेरा होता है, बट हम कोई भी डिसीजन मैं अकेला इंडिविजुअली नहीं करता हूँ, हमारी टीम है पूरी, सारे पढ़े लिखे हैं, कोई एडवोकेट है, कोई अच्छी कंपनी में मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हमारी अच्छी टीम है। आज के दिन सर ये लगा लो कि हर गांव में हमारी रीच है, एक एक गांव का जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो फायदा उठा रहा है, नीरपुर राजपूत में गांव में आके वो फायदा उठाता है कि हम स्पोर्ट्स से कैसे जुड़ सकते हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं। और आगे भी सर हम इसी चीज पे काम कर रहे हैं कि हम आगे, अब लगभग 500 मेंबर हमारे क्लब में एज प्रेजेंट हमारे पास यूथ जुड़ चुका है, तो हम एक एज ए टीम ऐसे काम कर रहे हैं। सरपंच हो गया तो मेरा एक कोई टीम मेंबर है वो जल का काम संभालता है, भाई ये जल वल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम बैठ के समाधान उसका करेंगे, जैसे आपने देखा होगा जल मंत्री, सड़क मंत्री या परिवहन मंत्री इस टाइप के होते हैं। जी बताइए
0: जी। रतनपाल सिंह जी, आपसे हम बहुत सारी बातें और भी करेंगे, हमारे प्रश्न भी आप तक पहुंचेंगे, आप उनका भी जवाब देंगे, ताकि आपको बीच में थोड़ा सा विराम भी मिले। आपने जो शुरुआत में बताया, जो आपका मकसद था, वो मकसद आपने कहीं ना कहीं शुरुआत की उसकी और उसका रिजल्ट है। और सबसे बड़ी बात, आपने नशे की बात की, यहाँ से हमें अगर खेल का मैदान है तो हमारे जो बच्चे हैं वो वहाँ पर मेहनत करेंगे तो वो उस गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। साथ में आपने मैराथन की बात की और मुझे लग रहा है कि यह हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है और हम सब ने इसके लिए चीयर्स किया कि आपने एक सकारात्मक सोच बच्चों को, अपने गाँव वालों को, अपने ग्रामवासियों को दी और साथ में आपने आसपास का जो एरिया उसको भी इन्वॉल्व किया। जो मेरी जानकारी है अटेली में मंडी अटेली है, क्या वो आपके गांव से नजदीक है या दूर है?
4: नहीं सर, बिल्कुल पास में है, 1-1.5 किलोमीटर लगता है अटेली मेरे गांव।
0: क्या मंडी अटेली जो है, क्या वो आपके क्षेत्र में आता है कि या आपके क्षेत्र से बाहर है?
4: नहीं सर, क्षेत्र में क्या है कि जो हमारे गांव की कुछ जमीन है वो अटेली से टच में ही आ जाता है, ज्यादा दूरी नहीं है गांव की, 1 किलोमीटर से के बाद नगर पालिका का एरिया स्टार्ट हो जाता है।
0: मेरा मकसद पूछने का ये था कि क्या जो आपके गांव के जो किसान है, जो मेहनत करके जब वो मंडी तक जाते हैं, तो जो समस्याएं हमने ओवरऑल हरियाणा में देखी मंडी में, तो क्या आपने उस दिशा में भी कोई ऐसा प्रयत्न किया, कोई कोशिश की, या कोई सरकार के पास गए, आपको सरकार का उसमें कितना सहयोग मिलता है वो बताएं? ये तो मेरा प्रश्न है, उसके बाद प्रीतम जी और मनीष जी भी आपसे प्रश्न करेंगे, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दें।
4: सर इसमें हमने एक हेल्प की है कि हम, हमारा एक टीम मेंबर है जो इस तरीके के काम करता है कि जैसे किसी किसान को कोई समस्या आती है तो आजकल सरकार ने एक अच्छी मुहिम चला रखी है कि भी घर आके उनका जैसे परसों ये सरसों का रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सब चीजें करने का, बट हमने स्टार्टिंग में एक हमारे गांव की बच्ची थी उसको हमने रखा था कि भी आप यहीं पे इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह करो, यहाँ पे जैसे फसल का बीमा वगैरह किसी को कराना हो तो उस बच्ची को हमने रखा था, बट आफ्टर सम टाइम वो उनकी सरकारी जॉब लग गई, वो पुलिस में लग गई, तो एक भी एक खुशी थी, बट हमने उसके बाद हमने ये चीज कंटिन्यू रखी थी सर कि किसी को कोई हेल्प चाहिए तो हमारे गांव में सीएससी सेंटर है, तो हम वहां पे हम उनको हेल्प करने के लिए जो हमारे गांव के हैं वो हमारे पंच साहब भी हैं, हम उनसे बोलते थे कि आप इनकी हेल्प कीजिए, और इंडिविजुअली कैसे किसी के किसान को कोई समस्या आती थी तो मैं वहां पे जाके किसी अधिकारी से बात करनी हो या किसी किसान को कुछ ज्यादा ही समस्या आ रही हो तो वहां पे हम उनके लिए खड़े रहते थे, हमेशा हमारी टीम खड़ी रही है
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी, आपका प्रश्न।
1: सरपंच जी साहब मेरा एक प्रश्न है, जो आप कह रहे थे कि आपका जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद जो आपके इलेक्शन से पहले जो आपकी कमेटी थी उसका बना रखा है या आपने आपके पंचों का मंत्री परिषद बना रखा है, जो आज भी आपकी कमेटी है जो कार्यों का डिसीजन ले रहा है, इसके बारे में पूछ रहा हूँ।
4: सर एक सेकंड, मैं ये कहना चाहूँ, ये नहीं नहीं सर, ये पंच मेरे अलग है, पंच है वो अलग है, ये मेरी एक अलग टीम है, पंच हमारे शानदार सहयोग करते हैं कामों में, बट ये पंचों के अलावा एक सहयोगी टीम है, क्योंकि सभी को सर पद नहीं मिलता है आपको पता है, लेकिन किसी के कुछ सपने होते हैं कि मैं गांव के लिए कुछ करूं, बिना पद के भी किसी को मौका दे देना चाहिए, तो हमने वही डिसाइड किया था कि बिना पद के भी हम किसी को मौका देंगे जिनकी इच्छा हो काम करने की, उनमें रिटायर्ड आर्मी पर्सन भी है, कोई सूबेदार है, एक्स आर्मी मैन है, इस तरीके की हमने उनको जोड़ रखा है, वो नशे के अगेंस्ट जो बच्चा भाई नशे के खिलाफ नशा करके ज्यादा वो करता है, तो हमने पुलिस सहायता लेके उनको हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की है, कानूनी कार्रवाई भी करते हैं उनके अगेंस्ट, तो इस तरीके का हम काम कर रहे हैं, और जो ये पंचों के अलावा ये टीम है जो मेरी है ये काम करती है सर पंचों के अलावा।
0: जी मनीष जी।
2: जी जी प्रीतम जी, मैं एक बात और आपके सामने क्लियर कर दूं कि जो नीरपुर राजपूत की जो पंचायत है उसके अलावा पूरे क्षेत्र से है ना सरपंच साहब की टीम में जो इनका एकेएम राइज क्लब है, इस तरह अलग अलग विंग्स बांटी हुई है इन्होंने कि साइकिलिंग के लिए मेरे पास एक अलग पर्टिकुलर टीम है जो साइकिल के लिए प्रेरणा कर रही है, पौधारोपण के लिए एक पर्टिकुलर टीम अलग है,
4: बिल्कुल बिल्कुल सही
2: है ना, इनके पास ये जो जिस तरह से काम करते हैं इन्होंने एक अपना अलग ही पैटर्न बनाया हुआ है, स्पोर्ट्स में भी अलग है, स्पोर्ट्स में मैराथन के स्टूडेंट हैं, क्रिकेट के स्टूडेंट हैं, जो अलग अलग ग्राउंड पे काम करने वाले हैं उसके लिए अलग अलग विंग्स डाली हुई है, और बहुत ही अच्छा जो इन्होंने कर रखा है, छोटी सी पंचायत 500-600 वोटों की पंचायत है, परंतु हमारे क्षेत्र में क्या बल्कि ये पंचायत स्टेट लेवल पर एक अनोखी पंचायत है, इस चीज का हम यूं कह सकते हैं क्योंकि हमने जो सुविधाएं यहाँ देखी है ये अच्छे अच्छे मंचों पर नहीं दे पाते, और ये प्रयास इनकी संस्था इनकी टीम का है, और इसमें पूरे अलग अलग गांव से लोग जुड़े हुए हैं, ना कि अकेले नीरपुर राजपूत पंचायत के लोग जुड़े हुए हैं
4: इसमें। अच्छे छोटी सी दिखाना चाहूंगा, ये हमारा एक उसमें थोड़ा सा वो दिखेगा, ये हमारा ग्रुप है, इसमें मैं दिखाऊंगा, ये जो है ये पर्सन जुड़े हैं, देखो ये वेलकम इसमें दिखा, ये किसी दूसरे गाँव के हैं, ठीक है ये किसी दूसरे गाँव के हैं, अब आपको और दिखाता हूँ चलेंगे तो ये किसी दूसरे गांव के नारनौल से है,
0: कोई बात
4: तो इस तरीके से हमारी टीम में
0: रतनपाल जी आप ये बता सकते हैं क्योंकि ये स्क्रीन पे शायद प्रॉपरली ना दिखे, आपसे हम बात जानेंगे
2: ना आएगा अगली बार ये सुविधाएं हम देंगे।
0: जी जी
2: आपसे बात और बताऊंगा, एक बात और बीच में बोलूंगा कि जो रन फॉर अरावली का कॉन्सेप्ट था है ना, तो उसमें कहीं कहीं रेडियो अरावली का भी एक वो कॉलैब भी था, और वैसे एक अरावली जहाँ टाइटल आ गया तो ऑब्वियसली आपका सामुदायिक रेडियो तो इस जिले में रहना ही रहना है।
0: जी जी जी,
2: तो हर बार मैराथन टीम में खिलाड़ियों को मैसेजिंग वगैरह करने के लिए सामुदायिक रेडियो का प्रयोग किया जाता रहता है, और इनकी टीम जुड़ी है रेगुलर।
4: जी जी,
2: और मुझे भी इनके बारे में इसी तरह से पता चला कि टीम बहुत अच्छा काम कर रही है इनकी
0: जी,
2: और गुरविंदर जी बधाई के पात्र हैं जो हमारे क्षेत्र से है ना अच्छे ऊर्जावान प्रतिभावान है ना इन अगुवाई करने वाले प्रतिनिधियों को मंच दे रही है, और इन सभी रेडियो पर अपना रेडियो वितस्ता रेडियो रेडियो अरावली रेडियो ग्रामोदय समेत पूरे हरियाणा में विभिन्न मंचों पर इनको सुनने का और सुनाने का मौका दिया जा रहा है, इसके लिए गुरविंदर जी आप और आपकी टीम और साथ में वीरेंद्र जी सभी बधाई के पात्र हैं जी। चलिए भरत जी, सॉरी मैंने समय ज्यादा लिया, आप कंटिन्यू कीजिए।
0: नहीं कोई बात नहीं मनीष जी, आज क्योंकि अटेली से हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं और आज नारनौल से हमारे पास दो लोग जुड़े हैं, मैं मैडम से भी अनुरोध करूंगा कि अगर उनका भी कोई सवाल है वो भी पूछें, पर उससे पहले मैं सोशल मीडिया पर हमारे कुछ कमेंट्स आए वो मैं सरपंच जी तक पहुंचाना चाहता हूं। रणदीप सिंह लिखते हैं, सरपंच साहब का बहुत बहुत स्वागत है, राम राम टीम HIRD। उसके बाद रणदीप सिंह लिखते हैं, नीरपुर राजपूत गांव का मुख्य द्वार बेहद ही सुंदर और आकर्षक है, कृपया इस द्वार के सौंदर्य का हमेशा ख्याल रखा जाए। और लिखते हैं, मेरा एक और निवेदन है, जैसे अभी पैनल के सदस्यों ने भी कहीं गांव में प्लास्टिक के इस्तेमाल की ओर ध्यान दिया जाए, उदाहरण के तौर पर जैसे आपके यहाँ जो स्टेडियम है उसमें पानी की बोतल का यूसेज भी नियमित होना चाहिए और हुआ भी होगा, उसके डिकम्पोस्ट किया जा सकता है। मतलब इनका कंसर्न सरपंच जी ये है कि जब आप बड़े लेवल पे कोई काम करते हैं तो वहाँ खर्चे भी होते हैं, वहाँ इंतजाम भी करना है, पानी का इंतजाम भी करना है, तो इसका प्रबंधन आप कैसे करते हैं जब स्टेडियम में कोई मैच खेला जा रहा है, सपोज प्लास्टिक की 100 बोतलें वहाँ पर पानी पीने के बाद जमा हो गई, उसका प्रबंधन उसका निष्करण आप कैसे करते हैं जी?
4: सर उसका मैं बताऊंगा, पहले तो एक आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, जो हमारी टीम में एक राम भाई है, मनीष जी उनको अच्छा से जानते हैं, राम यादव जी, वो इस चीज पे बड़ा ही जबरदस्त काम करते हैं, हमारी टीम का हिस्सा भी है वो। और वो जैसे कि ये जो आपने प्लास्टिक का बताया, तो आपको पता है कि मैराथन वगैरह में प्लास्टिक के यूज वगैरह काफी, बोतल वगैरह ये पानी के ग्लासेस वगैरह यूज होते हैं, तो हमने बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस पे इसको अपनाया था कि हम कि प्लास्टिक को हम दूरी रखेंगे, और वो हमारा कहीं ना कहीं सक्सेस भी हुआ। हम मानते कि हम 100% सक्सेस नहीं होते कई बार इन सब चीजों में, क्योंकि पब्लिक जहाँ पे गैदरिंग करती है वो कोई अपने घर से बोतल लेके आता है ये सब चीजें, बट हमने इन चीजों को अवॉइड किया। और दूसरा जैसे कि आपने बताया कि पानी का हमें कैसे करना चाहिए, पानी के बोतल वगैरह का कैसे क्या करते हैं, हम अभी उस पर काम कर रही है हमारी टीम। मैं बताता हूँ, अभी जैसे पानी की जैसे बोतलें हमारे पास इकट्ठा होती हैं, अभी क्या है कि ग्राउंड्स में हमारी एक कैंटीन भी है, तो जहाँ पे फैसिलिटीज है खाने पीने की, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे पानी की जो बड़ी बोतलें होती हैं उनका हम यूज इसलिए करते हैं कि उनको बीच में से काट लेते हैं, दो हिस्सों में उनको डिवाइड करते हैं, और उनको किसी चैन सिस्टम से ऐसे लटका लटका के, हमारे वहाँ पे बहुत सुंदर झोपड़ी है वहाँ पे हम उनमें फूलों के पौधे वगैरह इस टाइप के हम उनमें लगा देते हैं। अभी तो ये आइडिया हमारा कि उसी ये चीजें कर रहे हैं, एक कुछ पानी की बोतलें ऐसे लगा के, मैं आपको गुरविंदर सर को मैं पिक्चर भी भेज दूंगा, ऐसे लाइन में हमने पानी की बोतलें लगा रखी है कुछ, तो उसमें क्या है कि एक नीचे पौधा लगा रखा है, एक से नलकी डाल के पानी की ऊपर टॉप में डालते हैं पानी, वो थोड़ा थोड़ा रिसाव कर करके वो पेड़ों में पानी लगता है, पौधों में पानी लगता है। अभी तो इस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, पानी की बोतल जो खराब होती है उनको।
0: चलिए ये आपने अच्छी बात बताई, और जितने भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको भी हम जरूर कहना चाहेंगे,
4: लाइक स्प्रिंगल जो होता है फवारा टाइप में स्प्रिंगल की तरह हम उनको यूज कर सकते
0: हैं। जी जी, तो श्रोताओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा। जी जी गुरविंदर जी, एक मिनट, मैं श्रोताओं को
3: पहले तो मैं सरपंच साहब को मतलब इस चीज की भी मतलब बधाई देता हूं कि जो पंचायती राज का मॉडल हम गांव में मतलब मनाना चाहते हैं ये उस पर पहले ही काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला कि जो स्थायी समितियां हैं वो पंचायती राज एक्ट के अधीन बनानी होती हैं, वो बनी भी होंगे गाँव में लेकिन वो कागजों में होती हैं, लेकिन इन्होंने वो अपने जो गाँव के लोगों को जो पंचायत से बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं गाँव को, वो ऑलरेडी वो समितियां वहां पे मतलब उसके रूप में काम कर रही हैं। जो जैसे जो बोल रहे हैं कि जो रिटायर्ड पर्सन है, हम भी चाहते हैं कि जो हरेक जो ग्राम पंचायत है उसमें जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं गांव के पढ़े लिखे होते हैं, उनका जिंदगी का एक तजर्बा होता है, उनके तजर्बे को ये यूज कर रहे हैं। क्यों मतलब आप कभी आपको हिमाचल में जाने का मौका मिले, हिमाचल में एक रवायत है कि वो अपना जो गाँव का घर है उसको कभी बेचते नहीं है, उसको मतलब वहां कोई प्रॉपर्टी खरीद भी नहीं सकता है अदर स्टेट का, तो वो उसको बेचते नहीं है। अगर कोई डिप्टी डायरेक्टर रिटायर होगा, कोई इंस्पेक्टर रिटायर होगा, कोई बड़े पास से रिटायर होगा, तो वो अपने गांव में जाके रहेगा। ऐसा मैंने देखा कि जब हम वहां हिमाचल में विजिट करते थे तो वहां की जो ग्राम सभाएं हैं वहां जो बुजुर्ग हैं, हम देखते थे कि उन्होंने ऐसे मतलब सीधे से कपड़े पहने हैं, टोपी डाली है, लेकिन जब वो हम बात करते थे तो आगे से मतलब ऐसे क्वेश्चनिंग या मतलब ऐसा एक सेशन देते थे तो हम उनको पूछते थे कि आप, वो बोलते जी मैं टायर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हूँ, मैं एजुकेशन से टायर हूँ, जिला शिक्षा अधिकारी टायर हुआ हूँ। और वो लोग मतलब जो जहाँ की ग्राम सभा है, जो पार्लियामेंट मिनी पार्लियामेंट है गांव की, अगर वो मजबूत होगी ना तो वहां सारा सिस्टम अपने आप सही बन जाता है। और हमारे गांव की एक त्रासदी है कि कोई एम्प्लाई जब गवर्नमेंट जॉब में आता है वो गांव छोड़ जाता है, वो गांव छोड़ के शहर में चला जाता है। तो मतलब गांव में जो लोग जिनको एक दिशा मतलब सी डायरेक्शन है वो नहीं मिल पाती। इसलिए जे हमारे अपने जो रतनपाल जी हैं, जे एक इनका सौभाग्य है कि इनके गांव में ऐसे लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अदरवाइज कई गांव में तो ऐसे होते हैं कि वही लोग अपोजिट में जाके खड़े हो जाते हैं, अगर सरपंच काम भी करना चाहे तो उनको काम करने नहीं देते हैं।
4: सर ये मतलब ये चीज मैंने भी फेस की है, ये चीज मैंने भी फेस की है। मैं आपको ऐसा नहीं है, आपको बताता रहूंगा कि हर जगह पे हर टाइप के इंसान होते हैं। बट मैंने एक चीज, मेरी भी शिकायतें बहुत लगी कि मैं भी ऐसा, मेरे ब्लॉक में पहला सरपंच जिसकी सबसे ज्यादा कंप्लेंट लगी। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, मैं आपको सभी को बताऊंगा, ये सभी श्रोताओं के लिए भी एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहूंगा कि या तो आप एनर्जी उन लोगों पे लगा दो जो आपकी शिकायतें कर रहे हैं, या आप एनर्जी अपनी जो आपके टारगेट है, जो आपके काम है उन पे लगा दो। तो मैंने उनको सोचा कि भाई ये भी हमारी चाचा ताऊ है, इनको करने दो जो करने हैं, मेरा काम है सीधा सीधा अपने एम पे टारगेट रखना। अभी वो भी निष्ठाई से नीचे बैठ चुके हैं कि भाई ये तो मानने वाला नहीं है, ये करेगा अपनी मर्जी से, अच्छे अच्छे काम करने, इसको करने दो। अब वो भी बैठ गए हैं, बट आप अपनी एनर्जी वहां पे लगा।

0: रखते हैं कि भाई मेरा एम ये है कि फालतू लोगों पे ध्यान नहीं देना, एनर्जी उधर खराब करने की बजाय मैं अपनी एनर्जी को सेविंग रखूं और इधर
1: चलिए
0: अपने काम जो
1: जी
0: है उस पे लगाएं, तो
1: चलिए
0: इस तरीके से
1: रतन
0: हम कर
1: रतनपाल
0: सकते हैं।
1: जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे दोस्तों के प्रश्न भी होंगे। हम जितने भी हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं, हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हो सकता है आज भी कोई कॉल आ जाए। जो कॉल आ जाए उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो भी काम अपने गांव के लिए किया, उसमें आपने महिलाओं के लिए क्या काम किया, बच्चियों के लिए क्या काम किया, एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और उसके साथ ही आप मुझे ये भी जवाब दे दीजिए कि आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में बोरवेल में एक बच्चा गिर गया जिसकी जान चली गई। आपके गांव में ऐसी क्या स्थिति है सरपंच होने के नाते? क्योंकि इसका एक वॉइस नोट भी मैंने अपने दोस्तों को भेजा है, उसमें ये कहा गया है कि जब गांव में कोई बोरवेल बनाता है उसको 15 दिन पहले सरपंच को लिख के देना है कि मैं ये बोरवेल खुदवा रहा हूं। इसका मतलब कोई भी बोरवेल अगर खुला पड़ा है गांव में, सरपंच जी ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं है। उसमें यह प्रावधान है कि आपने बोरवेल बनाया और उसके आसपास आप एक चार दीवारी बना दीजिए ताकि हर कोई व्यक्ति सीधा ही उस बोरवेल तक ना पहुंचे, चाहे वो पशु हो चाहे वो छोटा बच्चा हो जो कि आसानी से उस बोरवेल के अंदर जाता है। तो इन दो प्रश्नों का आप जवाब दीजिए और उसके बाद जो मेरे दोस्त हैं वो आपसे प्रश्न करेंगे। जी पहले महिलाओं के लिए और उसके बाद बोरवेल। जी
0: सबसे पहले तो महिलाओं के लिए आज जो सबसे बड़ी समस्या है मेरे ख्याल से, जो उनके फैमिली मेंबर जो दारू पीते हैं, उनके हस्बैंड दारू पीते हैं या कुछ ऐसे नशे वगैरह करते हैं, सबसे पहले तो सर हमने महिलाओं को सुख शांति देने की कोशिश की कि भाई इनके घर में अच्छे से फैमिली में माहौल रह सके, ताकि क्योंकि अगर ये माहौल, अगर महिलाओं को, अगर आपको पता है आज के दिन में मारा पीटा भी जाता है जो जो नशा पता करते हैं। पहले तो सर हमने शाम के टाइम पे हम क्या करते हैं, जब भी वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, हम और हमारी टीम स्टार्टिंग की बता रहा हूँ, हम वहाँ पे डोर टू डोर जाते थे, तो वहाँ पे हम एडवांस में खड़े मिलते थे, कोई भी अगर कुछ ऐसा बंदा आता कि उनको परेशानी होती तो हम एडवांस में खड़े मिलते थे। तो हमने ये एक दिल को हमारे को शांति मिलती कि हमें इन लोगों के लिए काम किया कि महिलाओं की परेशानी सबसे बड़ी जो तो ही वो मैंने ये दूर की कि उनके जो भी दारू वारू जो भी नशा वगैरह करते थे तो पहले ही जाके हमारी टीम वहां पे खड़ी हो जाती ताकि वो आए तो हम उनको अच्छे से सबक भी सिखा सके, अच्छे से उनकी काउंसलिंग की, हमने काउंसलिंग भी की है लोगों की, भाई आप ऐसे करोगे तो आपकी वाइफ है या फिर आपके बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, आप इनको इतने की आप शराब पीते हो तो इतने का आप घर में अच्छा खाने पीने के लिए लेके आओ, आप 200 रुपए की शराब पीते हो 200 रुपए के लिए बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आओगे, ये चीजें करेंगे। तो हमने एक सबसे पहले तो ये चीज की। दूसरा हमने सर रोजगार का किया महिलाओं के लिए, जैसे मनरेगा में काम भी हमने किया करवाया लोग महिलाओं से, और महिलाओं के लिए हमने एक चीज ये की है कि सर अभी एज प्रजेंट में जैसे हमने स्टेडियम बनाया और ये यहाँ पे किया, तो प्रजेंट में हमारे वहाँ पे हमने 4 लोगों को रोजगार दे रखा है, जो गांव की जिनमें 2 गांव की महिलाएं हैं 2 गांव के पुरुष हैं, जिनको रोजगार की जरूरत थी हमने रोजगार भी दिया है गांव में ही, और उसका पैसा जो होता है वो हमारा क्लब ही देता है। पहले हमने स्टार्टिंग में पंचायत से उनको फंडिंग की थी ताकि एक बार सहारा लग जाए लोगों को, बाद में क्लब से ही कंट्रीब्यूट करके हम उनको पैसा देते हैं सैलरी वगैरह का।
1: आपके
0: तो
1: गांव
0: महिलाओं के लिए हमने
1: आपके आपके गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं?
0: सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है।
1: इसके साथ एक कमेंट मैं पढ़ना चाहूंगा जो इसी के साथ जुड़ा है। रणदीप सिंह फिर लिखते हैं, कपड़े के थैले गांव की महिलाओं की मदद से बनवाए जा सकते हैं और ग्राम सभा के दौरान उनका वितरण किया जा सकता है। देखिए आज आप और हम द्वारा पर्यावरण को बचाने की मुहिम हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही अधिक लाभ देंगे। तो क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू आप कपड़े के जो बैग है वो बनवा सकते हैं, उनको वितरण कर सकते हैं, उनको काम भी मिलेगा और उस तरीके से? क्योंकि ये सवाल आपके इस बात से जुड़ा था तभी मैंने आपसे ये कमेंट भी आप तक पहुंचाया। जी
0: मैं बताता हूँ सर आपको एक चीज, जो कि मेरे ख्याल से किसी भी सरपंच ने इस तरीके का कोई सहभाग शायद उठाया नहीं होगा, मैं तो हिंदुस्तान की गारंटी ले रहा हूँ। हमने एक के हमारे एजुकेटेड महिला को लिया हमने साथ में, हमने टाई अप किया एक तरीके से कई कंपनियों के साथ में, क्योंकि कंपनियों में इंडस्ट्री एरिया में हमारी काफी मतलब एक तरीके से जान पहचान है, तो हमने कंपनियों से टाई अप किया, कई कंपनियों से मीटिंग भी हुई, कई कंपनियों के साथ हमने इस तरीके से डिस्कशन भी किया कि हम हमारे गांव की महिलाओं के गांव में ही कैसे हम उनको रोजगार दे सकते हैं। तो कंपनियों ने इस चीज पे हमारी सहमति बनी कि भी आप एक छोटा सा सेटअप करो, थोड़ा सा सेटअप करके और जैसे आपको पता है कि

0: ऑटोमोबाइल कंपनी है जो फास्टनर हो गए, स्क्रू हो गया, छोटे आइटम्स जो बनाती है, उन कंपनियों से हमने, बाउल की कुछ कंपनियां थी, हमने उनसे डिस्कशन किया, बट वो हमारा कहीं ना कहीं है ना सफल नहीं हो पाया। उसमें कुछ चैलेंजेस थे, इस तरीके के चैलेंजेस थे उसमें, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि एक तो सेटअप की प्रॉब्लम थी कि इतना बड़ा सेटअप हम लगाएं कहाँ से, हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रखी थी, बट हमने फिर भी कुछ महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी जिनको कुछ करना था, हमने उनको लिया कंपनियों में, हमने विजिट की, हमने हमारा पूरा प्लान बनाया। और ये आपको मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर हम इस तरीके के काम करने वाले हैं कि हम महिलाओं को रोजगार के गांव में ही रोजगार प्रदान करें। ये मनरेगा का हम 100 दिन काम दे सकते हैं, बट मैं ये नहीं चाहता कि महिलाएं 100 दिन काम करें, महिलाएं कंटिन्यू काम करें, अच्छे पैसे के लिए महिलाएं काम करें, ताकि उनके लिए ये हो सके कि भाई आप किसी कंपनी में या कहीं पे बाहर जाने की जरूरत है नहीं, एटलीस्ट कम से कम गांव में ही हम थोड़ा बहुत रोजगार मिले तो काफी, अपने वो ताकि अपने घर का खर्चा अच्छे से चला सके। हमारा ये प्लान सर भविष्य में है
1: जी। रतनपाल जी, बाकी मेरे दोस्तों के प्रश्न भी होंगे। आपने मनरेगा की बात की, मनरेगा का जो समय है वो 30 जून को समाप्त हुआ, एक जुलाई के बाद वीवी राम जी स्कीम आई है, तो क्या आपने उसके बारे में जानकारी पूरी हासिल की है? उसमें प्रावधान ये है कि आप गांव में बैठ के अपनी ग्राम सभा बुला के गांव वालों से, ग्राम वासियों से मशवरा करके ये एक योजना बना सकते हैं कि हमें एक साल में क्या क्या कार्य करने हैं, और जहां मनरेगा में 100 दिन देते थे वहां पर आप 125 दिन आप दे देंगे। तो क्या इस तरह की कोई योजना है? आप एक साल का जो कोई पेंडिंग काम है वो वीवी राम जी के माध्यम से आप उसका पूर्ण करें, और क्योंकि उसमें काम जब गांव वाले करेंगे उनको 125 दिन का रोजगार भी मिलेगा। और प्रीतम जी, इसके बाद आप प्रश्न कीजिएगा, मनीष जी आप भी पूछना चाहेंगे तो आप भी पूछिएगा, पहले इस प्रश्न का जवाब दें, उसके बाद हम बोरवेल की बात लेते हैं जी।
0: इसका मैं सर, ये मेरे संज्ञान में आया है, आज ही मेरे जो सचिव हैं उनका मैसेज आया था कि इस संज्ञान में इसी मैटर के ऊपर हमारी ग्राम सभा की मीटिंग इसी संडे को है सर, 12 तारीख को
1: जी,
0: तो इसी मैटर पे मीटिंग है। तो ये मेरे को पता है कि 125 दिन का हो चुका है वो, तो उसमें मेरे गांव में काफी प्लान कर रखे सर मैंने। अभी क्या है कि जो पानी का झोड़ बोलते हैं, तालाब होता है, उसके चारों तरफ सर मैंने सड़क बनवाई है, एक वॉकिंग ट्रैक बोल सकते हैं हम उसको, चलने के लिए
1: जी।
0: तो वॉकिंग ट्रैक बनवाया मैंने, बहुत सुंदर है, मैंने सर को पिक्चर भी भेजी है, रविंद्र सर को, तो बहुत ही शानदार है। उसमें मैंने क्या किया कि उस पे के चारों तरफ मिट्टी का कार्य मेरे को करवाना है, तो वो मैं इसी से शुरू करने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी इसका प्रस्ताव भी कर रखा है, सारी चीजें हो चुकी है पंचायत में, तो वो मैं मिट्टी का उसमें करवाऊंगा। दूसरा क्या है कि सर हमें अपना जो स्टेडियम है उसको थोड़ा सा और बढ़ाना है, एरिया थोड़ा और बढ़ाना है, तो क्या है कि मिट्टी है वहां पे बहुत सारी, तो मिट्टी को भी हम हटवा के इसी स्कीम के तहत हम उसको हटवा के अपने गांव में कार्य करवाएंगे।
1: मनीष जी, अभी सरपंच जी ने बोला कि जो भी गांव में कोई नशा होता है उसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किया, क्या हम तो रेडियो के माध्यम से तो कहती है, क्या आपने रेडियो के माध्यम से इसका प्रचार किया या पर्सनल लेवल पर आपने लोगों को बता दिया कि ये जो चीज है इससे हमारे घर परिवार में नुकसान हो सकता है या जो क्लेश हो सकता है या जो भी हो सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे मनीष जी आप?
2: जी, ये तो सामुदायिक रेडियो पर वैसे भी नशा मुक्ति के ऊपर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी चलते रहते हैं और जिंगल्स वगैरह भी अभी प्रोवाइड किए थे, तो पब्लिक इंटरेस्ट में रेगुलर चलते रहते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर जो बात रही उसके बारे में कभी व्यक्तिगत रूप से बैठ के ही बताएंगे आपको।
1: चलिए, अच्छी बात है, आपको आज हमारे आपको शो में देख के बहुत ही आनंद आ रहा है, क्योंकि आपकी जो आवाज है बहुत बुलंद आवाज है, और आप कभी कभी हमारे पास आते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि आप रोज आ जाएं, आप सारे काम छोड़ के चार से पांच बजे हमारे साथ जुड़िए और आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रीतम जी बताइए,
3: मेरे पास एक कॉल आ रही है, ममता जी की कॉल आ रही है,
1: वो सवाल मैंने पूछा सरपंच जी से, आप ले लीजिए कॉल।
3: हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार ममता
4: जी। नमस्ते सर
1: जी। ममता जी पूछिए पूछिए सवाल आज जी।
4: सरपंच साहब से मेरा एक सवाल है
1: जी,
3: बताइए क्या सवाल है।
4: मेरा ये सवाल है कितने घरों में कैसे टीम को भेजोगे, इतने घरों में कैसे जाओगे, कैसे करोगे, आपके जाने के बाद वो फिर रात को झगड़ा वगड़ा आदमी। तो इसलिए महिलाओं को क्यों नहीं जागरूक करो भाई, तुम्हारे पास ऊपर अत्याचार करता है, तुम अपना हथियार खुद उठाओ, तुम अपने पेट को कड़ा करोगी तभी ये सुधरेंगे। ऐसे बात थोड़ी बनेगी सर, कितने के दिन जा जाके खड़े होगे, कितने के दिन वो करोगे
1: जी। सरपंच जी जवाब दीजिए आप,
4: कल आपका दूसरा सरपंच आ जाएगा क्या, वो करे, वो ये इंतजाम करेगा।
0: ममता जी नमस्ते। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने बढ़िया ही क्वेश्चन किया और एक सजेशन भी दे दिया मेरे को बढ़िया सा। पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर हम वहां पे जाते हैं तो महिलाओं की एक हिम्मत बन के ही जाते हैं। पहली बात तो ये, आज तक कोई मेरे ख्याल से जाता नहीं होगा। आज के टाइम में हमारे गाँव की महिलाएं भी ऐसा है कि उनमें भी हिम्मत है कि वो उनको अब रोक सकती हैं, वो हमें कॉल भी करती हैं तो हमारे टीम मेंबर चले जाते हैं। और दूसरा एक पुलिस सहायता भी एक ऐसी बन चुकी है आज के दिन में जो सरकारें कर रही हैं 112 वगैरह पे, तो इन पे भी महिलाएं आजकल खुद इतनी जागरूक हो चुकी है कि खुद कॉल कर लेती हैं। बट हम ये नहीं चाहते कि अगर महिलाएं क्या करती हैं कि मैं बताता हूँ कि महिलाएं वहां पे जागरूक है, ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है, और हम भी जागरूक करते हैं अपनी तरफ से। पर प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक महिला ने, हमारे गांव की महिला ने खुद के पति को ही मतलब एक तरीके से डांटा फटकारा मारा पीटा, तो चोट ज्यादा लग गई उसके पति को क्योंकि वो नशे में था। बट उस चीज में सरपंच की जिम्मेदारी भी तय होती है कि भाई ऐसा झगड़ा ना करके उनकी दोनों की काउंसलिंग करे, दोनों को समझाए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और महिलाएं अगर झांसी की रानी बन जाएंगी तो फिर उस टाइम पे तो ज्यादा दिक्कत उनके पति को और उनके परिवार को ही होगी, और उन्हीं को ही डॉक्टर के दिखाना पड़ेगा। और कल को केस वगैरह लग जाता है, मेरे गांव का एक केस था, उनको अंदर करवा दिया और महिला अगले दिन बेचारी इतनी परेशान, वकील ने उनसे पैसे मांगे जमानत के लिए, सब चीजें। तो सोचना पड़ता है एक सरपंच को भी कि कैसे किस किस को करें। महिलाओं में मेरे को जगाने जरूरत नहीं है, महिलाओं में हिम्मत है, महिलाओं में बहुत हिम्मत है। और हमारे देश की महिलाएं तो झांसी की रानी रानी पद्मावती हुई है, तो इसमें तो कहने की कोई जरूरत नहीं है जागरूकता की। जी
4: बात सुनो सर, मैं भी समस्या से जूझ चुकी हूँ, पर मैं नशे में कुछ नहीं किया, मैंने सुबह उठ के ये प्रॉब्लम सुलझाई अपनी। मैं घर वालों के भी पास बहुत आड़े खाए, सबके पास आड़े खाए, मेरी किसी ने नहीं सुनी। पर एक दिन मेरा ऐसा आया कि मैंने उसको ऐसा सुधार दिया कि आज दारू पीते हैं।
0: तो ये तो मैं
2: ये फार्मूला
0: आपके लिए,
2: ममता जी ये फार्मूला प्लीज आप डिस्क्लोज कर दो, ये डिस्क्लोज कर दो फार्मूला आप।
1: चलिए ये जब हम ममता जी के पास जाए, हमने एक मिनट जब हमने अभी
0: वीरेंद्र करता हूँ, मैं आपको निमन करता हूँ,
1: जब वीरेंद्र सर थे तो उन्होंने ममता जी को कहा था कि हम आपके गाँव आएंगे पकौड़े भी खाएंगे, और हमने कहा था कि हम भी जाएंगे। तो जब हम जाएंगे ममता जी के गांव में और उनके घर में, वहां मनीष जी भी होंगे, प्रीतम जी भी होंगे, और बैठ के इस मसले का समाधान जो भी होगा तो फिर हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। ममता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपका सवाल जो है वो मैंने पहले ही सरपंच जी से पूछा था, आपने आज भिन्न सवाल किया तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीतम जी आपका कोई प्रश्न हो सरपंच जी के लिए, और उसके बाद गुरबिंदर जी भी सवाल पूछेंगे। जी
3: मेरा श्रोता से ये प्रश्न है कि अगर कोई श्रोता फोन करना चाहता है तो जो हमारा जो स्टूडियो नंबर है वो काफी दिन से बंद है, तो मेरा पर्सनल नंबर है 999-140-2970, इसके ऊपर कॉल करके हमारे इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकता है।
1: एक बार फिर बताइए
3: नंबर। सरपंच साहब को भी सवाल पूछो। 999-140-2970।
1: जी धन्यवाद जी, आप अपना प्रश्न पूछिए सरपंच जी से।
3: मेरा तो प्रश्न यही है सरपंच साहब, जो विकास कार्य जितने कर रहे हैं, जो इन्होंने बताया कि मेरे पास इतनी प्रॉब्लम आई, ये सर्विस छोड़ के इस सरपंच जी के टाइम आए, तो इन्होंने क्या इनका रुझान राजनीतिक की तरफ से पहले था या सपोर्ट्स की तरफ पहले से था, या इन्होंने डिसाइड कर रखा था?
1: सरपंच जी फोन पे बिजी हैं, उन्होंने आपका प्रश्न सुना नहीं। सरपंच जी आपसे एक प्रश्न आ रहा है।
2: प्रीतम जी आपके
0: एक अर्जेंट कॉल था।
1: जी जी
0: डारनोल से था, थोड़ा मीटिंग का था थोड़ा। हाँ जी बताइए, आपने तो बोला कि राजनीति में आने का या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करने का, वो आपने क्वेश्चन किया, मैं सुनता हूँ सर, ऐसा नहीं है दिमाग चारों तरफ घूमता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर स्पोर्ट्स का ऐसे है कि सर मैंने ये डिसाइड किया था कि भाई गांव में स्पोर्ट्स का नहीं, गांव में विकास कार्य हो, पहली बात तो ये। और स्पोर्ट्स का ये था कि सर मैं भी एक क्रिकेट प्लेयर हूँ, मैं भी खेलता हूँ, अच्छा थोड़ा खेल लेते हैं हम भी। तो मैं गुड़गांव में जॉब करता था, तो मैं वहाँ पे ग्रीन घास में और कॉरपोरेट क्रिकेट खेलते थे हम अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ। बट वहाँ पे एक चीज का था कि मेरा एक ड्रीम था कि सर मैं, मेरे गांव में जगह है, सब कुछ है, मैं मेरे गांव के युवाओं को ये चीज नहीं दे सकता क्या, ये मेरा क्वेश्चन था। तो इसी सवाल ने हमें सर इलेक्शन लड़ने को मजबूर किया, कहीं ना कहीं खेल से रिलेटेड चीजों ने मेरे को राजनीति में आने पर मजबूर किया। कुछ गांव के जो यूथ था वो नशे की तरफ अग्रसर हो रहा था, उनको रोकने के लिए मैंने किया कि सर कि ये सब अभी नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। तो सर वो चीज दिमाग में, उसको लेके आगे बढ़े और आप लोगों का साथ है और युवाओं का, साथियों का साथ है बढ़िया तरीके से, बुजुर्गों का साथ है, तो हम अच्छे से और भी अच्छा करेंगे। अभी प्रयास बहुत ज्यादा है कि हमारे पास समय कम बच गया है, बट अभी हमारे टारगेट्स है, स्विमिंग पूल का टारगेट है, पंचायत में एक स्विमिंग पूल हो साथ में, ताकि एक फैमिली स्पोर्ट हो जाए हमारे पास। एक मिनी रेस्टोरेंट का भी प्लान है कि ताकि एक वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ कोई आए घूमने घूमने, तो एक स्पोर्ट्स कल्चर देने का। अभी कम से कम ना 10 गेम हमने ऑलमोस्ट 8 से 10 गेम हमने जोड़ रखे हैं जो अलग अलग लेवल पे चल रहे हैं, जिनकी अलग अलग कमेटियां हैं, मैनेजमेंट कमेटी हो गई और एक हमारी एक एमराइज क्लब की कमेटी है, मेन कमेटी हो गई, एक मेन कमेटी में मैं भी हूँ, बाकी अलग अलग कमेटियों में अलग अलग पार्टिसिपेट लोग करते हैं और सभी अलग अलग जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, वो अपनी अपनी डिसिप्लिन कमेटी, इवन COC बना हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है अभी उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उसके व्यास पे भी हम काम करते हैं कि किस तरीके से हम डिसिप्लिन में रह के कहाँ आपको यहाँ पे खेल सकते हो और डिसिप्लिन में रह के आप दूसरे की कैसी इज्जत कर सकते हो।
1: जी धन्यवाद। और हमारे इस कार्यक्रम का समय थोड़ा सा रह गया और प्रीतम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, और रेडियो अरावली से जो मैडम है अगर ये भी कोई सवाल करना चाहते हैं, और गुरविंदर जी भी, और आप उससे पहले जो मैंने बोरवेल का प्रश्न किया था उसका आप उत्तर दें, और उसके बाद मैडम और गुरविंदर जी और साथ में प्रीतम जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी
0: सर, बोरवेल का मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसे बोरवेल हमारे भगवान के आशीर्वाद से ऐसा कुछ अभी तक कोई ऐसा कहानी हुई नहीं है, बट हम फिर भी अवेयर हैं इस चीज को लेकर कि जैसे कि कुछ भी चीज होती है तो हम चार दीवारी तो ना करके, लेकिन एक चीज हमारे जो किसान होते हैं या फिर गांव में किसी करना होता है तो वो काटे की जो छड़ी टाइप की होती है इस टाइप के वो हम डलवा देते हैं, ताकि वहां पे कोई जानवर भी ना जा सके, कोई कुत्ता हो गया या फिर मतलब एक तरीके की कोई एक्टिविटी वहां पे जाके कोई ना कर सके, तो हम इस तरीके से करते हैं। और वो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन में हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है बोरवेल का। मैंने भी अपनी 3 साल की योजना में मैंने 3 बोरवेल मेरे गांव में करवाए हैं, तो हम भी इस चीज को लेकर अवेयर हैं और बाकी को भी अवेयर होना चाहिए कि आप चार दीवारी तो नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट इस तरीके का इक्विपमेंट डाल दे ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे, वहाँ पे लाइट वाइट की अच्छी सुविधा करवा दे, यहाँ पे कुछ अभी तो वो चले हुए हैं कोन टाइप के रखे हैं, कोन टाइप लगा के चैन वगैरह या फिर लकड़ियां डाल दे, ऐसा कुछ कर सकते हैं।
1: जी प्रीतम जी आप कुछ कह रहे थे।
2: डन डन।
3: मेरा भारतीय सरपंच साहब से ये सवाल था कि इनकी जो टीम बनी है उसमें महिलाएं सदस्य कितनी है?
0: सर उसमें महिलाओं की अभी सदस्यता ऐसा है कि मेरे गांव में कुछ महिलाओं की, हमने लड़कियों की सदस्यता को हमने किया था कि भाई जैसे अभी स्पोर्ट्स में लड़कियों को हमने जोड़ा है कि अभी छोटे बच्चों के लिए हमने ना एक कोच को हायर करने की अभी मुहिम चला रखी है, जो जो लेडीजों को, लड़कियों को, जो छोटी बच्चियों को तैयार करे, जिसमें मेनली बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल और रनिंग का, इसके लिए हम अभी कोच का तैयारी कर रहे हैं महिलाओं की, उसमें भागीदारी अभी तो सिर्फ स्पोर्ट्स में भागीदारी बहुत हो चुकी है, जो नई बच्चियां हैं उनकी स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा भागीदारी है, वो रनिंग करने लग गई है, स्पोर्ट्स में आके खेलने लग गई, अभी इवन क्रिकेट की कोचिंग हमने स्टार्ट कर दी, तो हमारे पास अभी 5 से 6 बच्चियां हमारे पास जुड़ भी चुकी हैं जो क्रिकेट की ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है, तो अभी ये है सर इसमें। और अभी जल्दी हम महिलाओं की भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि अभी हम स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो सर अभी आपको पता है कि महिलाओं को अपने थोड़ा सा स्पोर्ट्स के लिए अवेयर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम महिलाओं की इसमें थोड़ी सी भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे।
1: जी मैडम आपका कोई प्रश्न हो आप पूछना चाहेंगे सरपंच जी से?
5: जी सरपंच साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए, कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी, तो कोई एक ऐसी चुनौती हो आपके सामने जो बहुत आपको डिफिकल्ट लगी हो, तो उसे आपने कैसे पार किया?
0: बिल्कुल, आप बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मैडम आपका। मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो उम्र आड़े आई थी, मेरी एज जो थी, मेरे बड़ी मतलब गांव में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़ा ही मतलब उनके सामने मेरी एज ने बड़ा ही थोड़ी सी दिक्कत पेश की थी। वो इस तरीके से की थी कि मैं थोड़ी मेरी एज, मैं 26-27 साल का सरपंच बन गया था, और गांव के लोगों को समझाना, अवेयर करना, वो सोचते अरे यार तू क्या, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, तेरे पापा को भेज। मैं कि नहीं, मेरे पापा नहीं आएंगे, जो भी डिसीजन करना मेरे को करना है। और पहले जो सरपंच था मेरे गांव में, वो 52 इयर्स ओल्ड, मतलब उनका बेटा था, मतलब कि एक सरपंच था, वो लड़का 25 साल का था, बट उनके फैसले सरपंची उनके फादर ने की थी, बट मैंने ये जी जी सर जी सर
3: मेरे पास वो कॉल हो रहा है, कॉल सुनिए। हेलो
6: सर, नमस्कार।
3: नमस्कार, कौन बोल रहे जी?
6: विजय सिंह लखरा बोल रहा हूँ जी, वीर भूमि खेड़ी तलवाना महेंद्रगढ़ से जी।
2: खेड़ी तलवाना महेंद्रगढ़।
1: हाँ जी लखेरा जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
6: सबसे पहले तो सर बहुत अच्छे साहब जी, गुरविंदर जी सर, मैं सबसे पहले सरपंच जी को धन्यवाद दे रहा हूँ। इतने तरक्की, छोटी सी उम्र में इतने बढ़िया काम, प्लीज के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और सर जी बता रहे थे नीरपुर गांव अटे भी शायद हम भी रोशन रहे हैं जी, वहाँ एक सुभाष जी का स्कूल होता है कृष्णा पब्लिक हाई स्कूल, सुभाष यादव जी का वहाँ पढ़े थे 90 के आसपास जी। और आपका गांव उस टाइम कुछ दौर के टाइम में तो देखिए पुरानी बातें हैं, काफी कुछ बदलाव भी हुए हैं। और सर सब और मेरा लास्ट प्रश्न ये सर, आप रोजगार मतलब से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे या हमारे जैसे कि फौज में जाने वाले बच्चे अग्निवीर में, ये कुछ तादाद बताएंगे सर?
0: सर मैं सुन नहीं पाया, वॉइस ब्रेक हो रही थी सर की।
1: ये कह रहे हैं कि आपके गांव में जी जी जी, आप प्रीतम जी बताएं। और साथ में हम स्वागत करते हैं आज हमारे जो सबसे पहले आने वाले होते हैं, आज वीरेंद्र सर कहीं बिजी रहे होंगे, और अब जितना टाइम बचा है वो सब वीरेंद्र जी का है। और प्रीतम जी आप कुछ कह रहे थे, वो पूछिए उनसे जी।
3: इनका सवाल है कि इनके गांव में जो अग्निवीर या लोगों को रोजगार मिला है, युवा बच्चों को, वो क्या कितनी तादाद है? क्योंकि आपके गांव में जो सब आप इतने जागरूक करे तो लोग कितने गए हैं सरकारी जॉब तरफ?
0: मैं बताता हूँ सर, अग्निवीर में मेरे गांव में अभी क्या है कि सर रनिंग ट्रैक वगैरह का मैंने निर्माण करवाया, तो उससे गांव के जो युवा हैं वो काफी मतलब प्रैक्टिस करने लगे, पहले कई चीजों की फैसिलिटी नहीं थी, बट अभी क्या है कि हमने ये सब चीजें की, रनिंग ट्रैक वगैरह बनवाया। तो मैं तुलना अभी वीर भूमि जो ये खेड़ी तलवाना है, इस गांव की, नीरपुर गांव की कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि आपका गांव सर बहुत ही बड़ा है और मेरा गांव सिर्फ 600 वोटों का है, तो आप कंपैरिजन टू नीरपुर एंड खेड़ी तलवाना ये कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें एक चीज है मैं बताता हूँ, आपकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और आपके वहाँ पे खेलों की फैसिलिटी हमारे से पहले है, तो आपके गांव में अगर 100 बच्चे अग्निवीर में गए हो तो मेरे गांव में 4-5 बच्चे का एवरेज आता है।
1: जी जी, धन्यवाद धन्यवाद वीरेंद्र सर, आप कैसे हैं? और सर स्वागत आपका, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। वीरेंद्र सर तो चले गए,
0: 5-7 मिनट
3: सरपंच साहब जी,
2: ये नेटवर्क इशू आ रहा है, जल्दी हमसे जुड़ेंगे, हमें आज जुड़ गए सरपंच साहब, जुड़ गए हैं
0: जी जी जी।
2: और साथ हमारे स्टूडियो से रेडियो अरावली से जुड़ी हुई है निकिता, वो भी एक खिलाड़ी हैं और कोच भी हैं, गेम का नाम वो खुद बताएंगी, आप अपना एक बार गेम के बारे में, कोच के बारे में, निकिता जब तक वीरेंद्र चौहान सर नहीं आते तब तक आप अपने बारे में बताएं
1: जी निकिता,
2: और आप किस प्रकार नीरपुर राजपूत की सहायता कर सकते हैं, आप कौन से गेम में बताओ सर, प्रसाद की क्या सहायता है?
3: बताइए मैडम
1: जी। निकिता जी बताइए
5: जी। सर मैं शुरू कराने की मैं लड़कियों को अर्लनेस कैंप वगैरह इसमें आपके हेल्प अच्छे से कर सकती हूँ, ताकि वो अपनी सेफ्टी खुद कर सके, साथ ही मैं
0: निकिता जी आपके
5: खिलाड़ी भी रह चुकी हूँ।
0: लॉन टेनिस,
5: लॉन डिस्टेंस,
0: अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस, ओके
5: हाँ जी सर।
2: और ये गुरविंदर जी ने राम राम हरियाणा के लिए स्पेशल अपॉइंट किया है इनको, निकिता जी को, लेकिन इनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं ये। जी चौहान साहब स्वागत है आपका, सादर प्रणाम, राम राम।
7: राम राम मनीष जी, आपको देख के और आपको सुन के मैं गदगद हो गया हूँ, दिल बाग बाग हो गया। आपने सरजमीन हिंद पे, मेरे वतन पे और इस राम राम हरियाणा पे जो ये एहसान किया है ना, दर्शन देके महाराज मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप अदृश्य मत हुआ करो, कहाँ चले जाते हो आप, या तो आप सार्वजनिक रूप से बताना चाहते हो तो यही बता दो, नहीं तो फोन करके बता देना आज।
2: नहीं जी, व्यक्तिगत रूप से मिलके बताएंगे, व्यक्तिगत रूप, यही बात हुई थी आज शो में भी, बीच में यही बात हुई थी जी, व्यक्तिगत रूप से मिलके बताया जाएगा। और आपको स्टूडियो से एक नौजवान दिया हुआ है आपको, है ना, एक नौजवान आपका स्टूडियो से उपलब्ध है, और इस और गुरविंदर जी को स्पेशल कहा हुआ है कि इनको ट्रेंड करो आप जी।
7: मैं देखिए, मैं तो केवल क्योंकि लेट हो गया था, और हमारे यहाँ इन दिनों बहुत काम चल रहे हैं, दो प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं लद्दाख से लेके और हरियाणा तक के, कई BDPOs हमारे यहाँ आजकल प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं 6 दिन के कार्यक्रम में, और एक VBG राम जी का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा हम लोग आजकल व्यस्त हैं नीलोखेड़ी उत्सव की तैयारी में। भारत जी, नीलोखेड़ी शहर स्थापना जो है 1948 में हुई थी, और ये एक नया शहर बसा था जंगल की भूमि पर, एकदम शून्य में, और फिर ये बहुत उदाहरण स्वरूप इसका जिक्र हुआ देश भर में, डेवलपमेंट मॉडल के नाते, ग्राम विकास के मॉडल के नाते। तो मैंने एक नया काम इन दिनों शुरू कर रखा है, यहाँ के ग्रामवासियों से, नगर निवासियों से मैंने बात की अलग अलग स्तर पर जाकर, और उन्हें कहा कि भाई आपके जिन पूर्वजों ने नीलोखेड़ी को शून्य से संजोकर एक एक ईंट, कभी कभी कोई कह सकता है मैंने ये शहर एक एक ईंट करके बनाया, ये बिल्डिंग मैंने बनाई, तो कभी शायद बनाई नहीं होती, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी एजेंसीज लगी होंगी, पर यहाँ के जो बाशिंदे हैं उन्होंने शून्य से बसाया था ये शहर, टेंट में आके बसे थे। आजकल के दिनों में ही ये जुलाई का शायद ये दूसरा सप्ताह चल रहा होगा, तीसरे सप्ताह में आए वो लोग। तो मैंने अनुरोध किया है नीलोखेड़ी के मित्रों से, यहाँ की नगर पालिका से, संस्थाओं से, कि वो नीलोखेड़ी उत्सव के रूप में इस शहर का स्थापना दिवस मनाया करें हर साल। तो पहला नीलोखेड़ी उत्सव वो हम 15 से शुरू करेंगे, 15 से लेके 19 तक अभी उसको चलाने का, छोटी छोटे कार्यक्रमों के जरिए हमारा प्रोग्राम है। तो उस सिलसिले में बहुत भयंकर व्यस्तता हो रखी है मेरी, भयंकर शब्द शायद सही भी ना हो यहाँ व्यस्तताओं के संदर्भ में कहना, लेकिन सचमुच बहुत व्यस्त हूँ। नीलोखेड़ी उत्सव के समय आप लोग भी जो हमारे राम राम हरियाणा के प्रतिभागी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं, आप लोग भी बीच में किसी न किसी दिन जरूर आए, आपके मंच के माध्यम से नीलोखेड़ी उत्सव की बात तो जाएगी ही सब जगह, लेकिन संभव हो तो किसी न किसी दिन आने का भी यहाँ आपका बने, हमें अच्छा लगेगा। और सरपंच साहब तो अदृश्य हो गए हैं,
0: मिनी सर मैंने, नमस्ते सर, कुछ नहीं, मैंने पानी पिया है बस, जस्ट पानी।
7: खैर समय हो गया आज के कार्यक्रम का, फोन पर आपसे बात करेंगे
1: जी।
7: आपको शुभकामनाएं, हमें खुशी इस बात की है भारत जी, इस कार्यक्रम के अंत में मैंने थोड़ा सा सुना रतनपाल सिंह जी को, कि जब जेनरेशन बदलती है ना
1: जी,
7: सास आसानी से बहू के हाथ में चाबी नहीं देती घर की तिजोरी की, और हर घर में जो बड़े दिल वाली सास होती है ना, जो बहू को बेटी घोषित करती है, वो भी जब उसको चाबियां थमाने के लिए कह दिया जाए तो चेहरे पे मुस्कान भले ही हो, लेकिन वो मुस्कान असल वाली नहीं होती।
0: सही बात है,
7: ऐसी गांवों में चौधर का हस्तांतरण, ये हमेशा ये थोड़ा सा कष्टकारी विषय होता है। हमने जब पंचायतों में एक नियम बना दिया कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी हरियाणा की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों की, तो उसके कारण बहुत सारे लोग जो पुरानी पीढ़ी के थे वो कतार से दूर हो गए
1: जी।
7: और उसी तरह की व्यवस्था के कारण, महिला आरक्षण की व्यवस्था के कारण महिलाएं बड़ी संख्या में आगे आ गई और युवक आ गए। रतन पाल जी जैसे आ तो गए लेकिन आसान नहीं थी इनकी राह, तमाम तरह की चुनौतियों का इन्होंने सामना किया होगा, उन चुनौतियों को इन्होंने पार किया। और जो इन्होंने बताया मजा आ गया सुन के, कि अगर किसी ने कहा कि अपने बापू ने बुला ले भाई सरपंच साहब फैसला करना है, तो हमारे नौजवान सरपंच ने टंकी की चोट पे कहा मैं सरपंच हूँ, पिताजी के स्थान पर जो निर्णय मुझे।
0: एक सच्ची घटना बताना चाहूंगा मैं आपको, सच्ची घटना। एक पंचायत हो रही तो वहां पे पापा हमारे पिताश्री बोलने लग गए, तो मैंने उनको बोला मैं कि आप मत बोलो, आप सरपंच नहीं हो, मैं सरपंच हूँ। तो ये चीज मैंने उनको बोली तो गांव में भड़काने वाले लोग बहुत होते हैं, उन्होंने उनको भड़काया कि तेरा छोरा नू बोल गया नू बोल गया। तो भाई उनको थोड़ा सा बुरा लगा, मैंने घर पे आके भाई माफी मांगी उनसे, मैंने बोला कि देखो आप बुरा मत मानो, कल को यही लोग आपको बोल देते कि तू क्यों बोल रहा है बीच में, तेरा छोरा सरपंच है। मैं कि ये एक डिप्लोमेटिक चीजें होती हैं, आप इनको थोड़ा अंडरस्टैंड करो। ये लोग पहले सरपंच जो था उसको बोलते थे कि तेरे बेटे को भेज, वो सरपंच है। तो मैं कि अब आपको मेरे को बोलते कि तेरे पापा को भेज, तो मैं कि ये चीजें चलती रहेंगी, आप मत बोला करो।
1: जी जी
7: बहुत बढ़िया। तो यहीं पर मुझे लगता है इस भाव के साथ आइए पूरे हरियाणा को राम राम हरियाणा के मंच से सामूहिक राम राम करते हैं। और राम राम हरियाणा का आज का विराम ये अल्प विराम है, हम राम राम कहकर जैसे ही यहाँ से रवाना होंगे तो इस भाव से रवाना होंगे कि सोमवार को फिर से राम राम हरियाणा के इस मंच पर नए मेहमान के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई कहने सुनाने वाली बातों के साथ हम फिर यहाँ मिलेंगे। सोमवार तक के लिए सबको राम राम
1: जी,
2: जी सबको राम राम, राम राम हरियाणा।
1: और मेरी जी इन्होंने तो

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: मैं

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: नब्बे आशारिया सिफर एफएम पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहे।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहे।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 8। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है रात। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, कार्यक्रम के लेखक, प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक आरजे किरण ने।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी और लेकर आई हूं रेट्रो हिट्स का एक और अंक, रात स्पेशल। रात, वो पल जब चांद के संग जज्बात भी जागते हैं। रात का सुकून, चांदनी की बातें और खामोशी के जज्बात का अपना ही एक एहसास होता है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे रात की। ये रात, ये चांदनी फिर कहाँ, सुनो एक कहानी दिले जवां।

रात भर चांद से बातें होती है, जिंदगी के गम चांदनी से धुल जाते हैं। रात की खामोशी में दिल का राज खिलता है और चांदनी की रोशनी में मोहब्बत लिखी जाती है।

रात खामोश है मगर दिल का शोर जागता है। जो बातें दिन के उजाले में छुप जाते हैं। रात के सीने में छुपी है मोहब्बत की कहानी। चांद की रोशनी में लिखा है दिल की प्रेम कहानी।

रात की चादर में गुम होती है यादें और चांद के साये में बिखर जाती है बातें। रात का सुकून है, चांद का नूर है और दिल के अफसाने हैं जो पूरे हैं।

दोस्तों, रात का सुकून और चांदनी की रोशनी हमेशा दिल के जज्बात को जिंदा रखती है। आज के इस सफर को यहीं रोकते हैं, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए जज्बात और नए गीतों के साथ। तब तक रात की खामोशी और रेट्रो गीतों का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 8। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था रात। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, कार्यक्रम को लिखा, प्रस्तुत किया और निर्देशन दिया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

खेल में हम हो न हो गर्मी में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो पर हम तुम्हारे।

आप सभी दोस्तों का हमारी इस खुशनुमा महफिल में खुश आमदीद। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। कुछ तुम्हारे वादे टूट गए, कुछ हमारे ख्वाब बिखर गए, और कुछ तुम्हारी कोशिशें भी नाकाम हुई। हम तो सजदों में मसरूफ रहे, और फिर भी न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे और न उधर के। मोहब्बतें मुफलिसी के दौर में पास रहती, गर तुम दूर न चले जाते, और हम यूं ही तन्हा पत्थरों के साथ नीला न हो पाते। हमारे तुम्हारे बीच इन फासलों के दरमियां ये जलता सूरज कब तक हमारी निगाह।

आंखों में जलन है। मेरे रास्ते की हर रह गुजर क्यों इतनी कठिन है। मांगी थी रोशनी पर अंधेरों ने दामन थाम लिया। चाहा था फूल मेरे आंगन में खिले पर कांटों से दोस्ती हो गई। कई बार इस तरह के सिलसिले जारी रहे और हम उफ तक न कर सके। शायद मेरा वादा था जिंदगी से जो निभाता आ रहा हूं मैं जन्मों जन्मों से।

खिल उठती थी तुम्हारी सुनहरी मुस्कानों से, और न जाने ये अब्र क्यों बेवजह परेशान होकर बरसने की कोशिश करता रहा, जबकि मेरे उस दौर की धूप में मैं अपने ही साए से अक्सर लिपटता रहा, यह सोचकर कि ढलते सूरज की आखिरी किरण शायद मेरे आने वाले कल को संवारने में मदद कर सके। जानता हूं ख्वाब पल भर में बिखरते हैं और हकीकत डराती है, पर हां यकीन है फिर वो सुबह होगी जो हमें तुमसे रूबरू कराएगी, तुमसे नई पहचान कराएगी और रिश्तों की अहमियत समझाएगी, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहटों में मैं अक्सर अपने तस्वीर को महसूस

परास्ती, मोहब्बत की राही, और हम तलाशते हैं अपने आने वाले कल को, वो कल जिसमें हमारी जिंदगियां रोशन हो सके, ताकि हम जीने सुकून से। जाने अनजाने कई बार समय ने करवट ली, शायद हम तुम्हारी आगोश में पनाह ले सके, क्योंकि तुम जो तकती रहती है इन प्यार के रास्तों को, और तुम्हारी बाहें मुंतजिर रहती हैं मुझे अपनी ओर लेने के लिए।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज जो इस समय कार्यक्रम चल रहा है उसको हमने विराम देने का सोचा है, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही टैलेंटेड और काबिल व्यक्ति हमारे स्टूडियो में इस समय है, और हमने सोचा कि जब वो आए हैं तो क्यों ना उनको अपने श्रोताओं से रूबरू कराएं। उनका इंट्रोडक्शन तो मैं नहीं दूंगा, इंट्रोडक्शन वो खुद देंगे, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप सभी जानते हैं कि जो ये सामुदायिक रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है, इसका संचालन करता है व्यथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी अंबाला। और जो आज के हमारे मेहमान हैं वो थिएटर के साथ जुड़े हैं, और मैं ये कहूंगा कि मेरे शिष्य भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। इनसे मैंने सीखा भी बहुत कुछ है और समय रहते इनको कुछ सिखाया भी है। और ये है अनिल यादव, ये एक्टर डायरेक्टर फिल्म मेकर है और साथ में एक शिक्षक भी है। इनसे ही जानते हैं कि ये आज के बारे में हमें क्या कहते हैं। सबसे पहले तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज हमारे स्टूडियो में एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये चंद समय के लिए आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। तो जिस तरह आपने कहा, देखो गुरु तो आप हो, क्योंकि आपसे हमने सीखा है, मेरे साथ और भी जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा, आज हम उसी के बेस पे हम सिखा भी रहे हैं। तो जिस तरह आपने कहा सर, देखो एक शौक, जिस तरह एक पैशन, फिर उसके बाद डायरेक्शन, फिर उसके बाद कहते हैं फैमिली चलाने के लिए जो हमारी एजुकेशन है उसको साथ चलाने के लिए हमें शिक्षक भी बनना पड़ता है। तो अभी वर्तमान में मैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, जो अपना सोनीपत राय में स्थित है।
0: अनिल जी, हमें गर्व होता है कि जब आप इस जगह पर काम करते हैं, कार्यरत होते हैं, लोगों को सिखाते हैं। मुझे पता है कि जितने आपने फिल्म्स बनाई हैं, जो आपने थिएटर किया है और जो आपने फिल्म मेकिंग की है, उसमें भी आपने बहुत सारे बच्चों को सिखाया है। सामाजिक मुद्दों पर आपने फिल्में बनाई हैं जिनमें मुझे भी मौका मिला काम करने का। और अनिल यादव को जाना जाता है कि ये सामुदायिक सिचुएशंस पर जो छोटी फिल्म्स बनाते हैं, जो समस्याएं हैं समाज की उस पर फिल्में बनाते हैं, तो इसलिए आप जाने जाते हैं। आपने कई सारे ऐसे फिल्में बनाई जिनको अवार्ड्स भी मिले, पर आपने सही बोला कि पैशन के साथ साथ प्रोफेशन होना जरूरी है, क्योंकि पैशन तो जुनून से चलता है और प्रोफेशन जब हम चलाते हैं तो हमें कुछ अर्निंग होती है, तो हम अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं, अपने घर परिवार को अच्छी अच्छा जो जीवन है वो दे सकते हैं, तो वो जरूरी है जी। मैं भी थिएटर के साथ जुड़ा हूं पैशनेटली, पर मेरा प्रोफेशन था, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य करता था, तो जो मेरा घर परिवार और मेरा थिएटर जो है वह वहीं से चलता था। तो हम शुक्रगुजार हैं हमेशा, जो भगवान ने दिया हमें जीवन में, हम आपके उस पर आते हैं। तो आपने कहा कि आप इस समय राई में असिस्टेंट प्रोफेसर है
1: जी, जी।
0: तो आप वहां पे क्या पढ़ाते हैं, क्या वो फिल्म के साथ ही कनेक्टेड है या किसी और सब्जेक्ट के साथ?
1: फिल्म है उसके अंदर मेन, हम जो सब्जेक्ट हम जोड़ते हैं, जैसे स्पोर्ट्स को हमने इसमें जोड़ा है
0: जी।
1: पहले ये जो अदर है वो सिर्फ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जनसंचार एवं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब हमने जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी जर्नलिज्म को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ दिया। जैसे पहले आप अगर अखबार की बात हम करते हैं,
0: प्रिंट मीडिया की बात करते हैं
1: तो वहां पे एक दो पेज होते थे, लेकिन आज अगर आप खोल के देखो तो स्पोर्ट्स के कितने सारे पेजेस बढ़ा दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि आप अगर स्पोर्ट्स की बात करो तो बहुत ज्यादा क्रेज युवाओं में देखने को मिलता है,
0: चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई सा भी हो। और अब तो महिलाएं भी क्रिकेट में आ गई और बाकी गेम्स में भी आ गई।
1: अभी जैसे जर्नलिज्म में पहले क्या है, लोगों के माइंड में होता था कि मैं पत्रकार बनूंगा, एंकर बनूंगा, सिर्फ वहां तक सीमित थे। लेकिन जब इसको हमने स्पोर्ट्स के साथ जोड़ा तो सर आप देखते होंगे कि पहले जो खेलते थे खिलाड़ी, या वो कमेंट्री करते थे या किसी एक्टर को बुला लेते थे। एक्टर को अगर आप अगर जब तक खेलोगे नहीं
0: तो आपको
1: रूल्स का नहीं पता चलेगा,
0: उस गेम की आत्मा का पता
1: नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या है, जो अभी ये शब्द एक स्पोर्ट्स जो खेल जोड़ा गया है वो इसी को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया है। जो पत्रकारिता से जितने भी युवा जुड़े हैं जिन्होंने किया हुआ है, अगर वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एडमिशन लेकर वो एक डिप्लोमा जब हासिल करेंगे तो उनको जो लाइव, जैसे हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जितने भी इवेंट्स होते हैं बच्चे उसको कवर करते हैं, उसको देखते हैं, एक एक पॉइंट्स कहाँ कहाँ कमियां हैं उस चीज को जानते हैं और बोलते हैं, उनके बोलने में भी कई मतलब किस तरह बोला जाता है और गेम को अच्छे से पढ़ते भी हैं।
0: और जब पढ़ते पढ़ते वो करेंगे तो आत्मविश्वास भी आएगा। इसका मतलब आपने ये बोला कि आप वहां पढ़ाते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो आप हमें हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में कहें कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अगर कोई बच्चा अंबाला से एडमिशन लेना चाहे, क्योंकि हमारा रेडियो विस्था का काम है लोगों को मार्गदर्शन करना है और आज हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर अनिल यादव जी हैं, तो क्यों ना हम लोगों तक ये पहुंचाएं कि अगर कोई बच्चा खेल कूद में और खेल जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो किस तरीके से आपके कॉलेज तक पहुंचे, क्या प्रक्रिया है और क्या उसका फ्यूचर है।
1: जी सर, जैसे कि अभी आपने बात करी है, अभी ये नहीं है कि जो जिसने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया है वही बच्चा जा सकता है। जिस बच्चे ने किसी भी स्ट्रीम से अगर उसने ग्रेजुएशन किया है और उसको शौक है खेल में तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकता है। अभी हमारी यूनिवर्सिटी में लास्ट डेट 10 तारीख तक थी, लेकिन हमने अप्रोच करा कि इसको बढ़ाया जाए तो इसको 25 तक कर दिया गया है। तो जो भी युवा अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाना चाहता है, जैसे कमेंट्री में जाना चाहता है, कंटेंट लिखना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, रील तक इसके अंदर हम इसमें रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्री तक रखा हुआ है हमने कि एक खिलाड़ी के लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री किस तरह बनाते हैं और अगर जो गेम है उसको कैसे हाईलाइट करके दिखाते हैं। अभी हमारे यूनिवर्सिटी में सर कबड्डी लीग हुई थी तो वो कम से कम एक महीना चला, उसमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो खिलाड़ी आते थे उनसे फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट करते थे और वो लाइव भी देखते थे तो उनको इतना ज्यादा मतलब वो एक्साइटमेंट में थे।
0: सभी अंबाला के श्रोताओं को मैं कहना चाहता हूँ, सभी अंबाला के युवाओं को कहना चाहता हूँ कि प्रोफेसर अनिल यादव कह रहे हैं कि जो आज के दौर में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में बच्चा इंटरेस्टेड है वो राई में जा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं और इसका जो डेट है 10 जुलाई के बजाय अब 25 जुलाई किया गया है और आप इसके बारे में नेट पर सर्च कर सकते हैं और आप रेडियो विस्था के साथ संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अनिल यादव हमारे वे थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है। हम भी आप सभी अंबाला के युवाओं को मार्गदर्शन कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, हम आपको डायरेक्टली अनिल जी से भी बात करा सकते हैं जो आपको इस विषय में, क्योंकि वो इस विषय के मास्टर है तो आपको समझा सकते हैं। हमारा मकसद है कि थोड़े से समय में हम आपको ज्यादा जानकारी दें और आपको पता है कि हमारे जो प्रसारण 9 बजे समाप्त होते हैं पर आज हम अभी कुछ मिनट के लिए अनिल जी के साथ बात करेंगे। अनिल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक्टर है, डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, आप राइटर भी, आपने किताबें भी लिखी है, अब आप शिक्षक भी हैं, तो एक एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर का स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से क्या नाता है?
1: सर, जैसे क्या होता है, हम जो लिखते हैं कहीं ना कहीं फिक्शन जरूर ऐड करते हैं
0: जी।
1: अभी क्या है कि हम ज्यादातर सोशल इश्यूज पे बात करते रहे हैं, हम खिलाड़ी पे अगर हम शॉर्ट फिल्म की बात करें तो हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमें पता नहीं होता है उसके, मतलब जैसे कहते हैं पार्शलिटी हो जाती है कुछ, जैसे हम देखते ना कि स्पोर्ट्स वाले कुछ नशा करते हैं, अगर जब तक हमें नहीं पता होगा, हम रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक हम उसके अंदर नहीं घुसेंगे तब तक हम कंटेंट लिख ही नहीं सकते।
0: यानी कि हमें ये जानना है कि क्या हम सही है कि गलत है, हो सकता है कि वो उसकी जरूरत है पर हम ये मान के चलते हैं कि वो कुछ अलग चीज अपने बॉडी में एंटर करते हैं, तो उसके बारे में सारी जानकारी जब हम ये पढ़ते हैं, ये कितने टाइम का कोर्स है?
1: ये सर जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है 1 साल का कोर्स है
0: जी,
1: और इसकी फीस 20,000 है
0: जी,
1: केवल
0: जी,
1: जो कि हम 6 महीने में 10-10 करके लेते हैं।
0: यानी कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि एक नया सब्जेक्ट स्ट्रीम है
1: जी।
0: मैं तो बहुत सारी बातें करना चाहता हूं पर समय थोड़ा सा कम है हमारे पास। मैं ये कहूंगा कि जब हमारे पढ़ने का समय था हम तो कॉलेज जाते थे, ग्रेजुएशन कर दी और या तो पीसीएम में कर दी या आर्ट्स में कर दी। आज के डेट में हमारे बच्चों, हमारे युवाओं के लिए 100 कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर उनकी इच्छा है, वो थिएटर में डिग्री करना चाहते हैं, वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में करना चाहते हैं, तो ये सारी ऑप्शंस है। तो गवर्नमेंट इसको प्रोत्साहित करने के लिए फीस कम रखी है, ताकि बच्चे आए, वो अपनी प्रतिभा को वहां पर दिखाएं और वो अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से चलाएं और अपने जीवन का जो उनका जो रास्ता है उसको हम वो तैयार करें।
1: जी,
0: तो प्रोफेसर अनिल यादव
1: जी,
0: जो इस समय राई में है, आप अपने इंस्टीट्यूट का पूरा नाम बताइए।
1: स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा।
0: स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा सरकार की सौजन्य से ये यूनिवर्सिटी चलती है और राई में इसका मतलब कैंपस है
1: जी।
0: तो जिनको संपर्क करना है तो वो या तो इंटरनेट से
1: स्पोर्ट्स साइट पे जा सकते हैं।
0: वेबसाइट का एड्रेस क्या है?
1: ये www.suoh.ac.in।
0: या आप इंटरनेट
1: स्पोर्ट्स
0: इंटरनेट पे सर्च करें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, तो वहां पहुंचे, वहां सारी जानकारी मिले। आपकी आपके लिए मैं शुक्रिया के अलावा ये कहता हूं कि मुझे खास करके भारत सोपोरी को गर्व होता है जब अनिल जी मेरे साथ होते हैं, मेरे स्टूडियो में मेहमान के तौर पर, या जब मैं आपके किसी फिल्म में काम करता हूं आप मेरे डायरेक्टर होते हैं, या जब थिएटर में मैं प्ले करता हूं तो मैं डायरेक्टर होता हूं। तो ये एक टीम वर्क है और मुझे लग रहा है कि हम अपने समाज को एक अच्छी दिशा दें और अच्छी बात कहें, उन तक अच्छी बात पहुंचाए। और खास करके खेल के हवाले से मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि आज के हमारे बच्चे कई बार डिप्रेस भी हो जाते हैं, अवसाद में भी होते हैं, स्ट्रेस में भी होते हैं। खेल कूद एक ऐसी चीज है जहां वो किसी गलत दिशा में नहीं जाते हैं, किसी नशे की लत में नहीं जाते हैं, तो उनका जो फोकस है वो उनका स्पोर्ट्स होता है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है और सभी अम्बाला वासियों के लिए सराहना की बात है कि अनिल यादव जी वहां पर है और सभी युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आप आइए, सर्च करिए और आप पहुंचे 25 जुलाई तक और अपना एडमिशन लीजिए और आप पत्रकार बनिए, एक स्ट्रांग पत्रकार बनिए, निष्पक्ष पत्रकार बनिए, और वो भी आपको डिग्री मिलेगी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आज के इस लाइव में, लाइव को समाप्त करने के लिए?
1: जी, सर पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे कुलपति हैं वो जो है IPS ऑफिसर रिटायर हुए हैं अशोक कुमार जी, वो इतना ज्यादा पॉजिटिव हैं, वो मतलब हर कोर्स को लेकर बच्चों को 1-to-1 वो बच्चों से मिलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। इसी तरह हमारे रजिस्ट्रार सर हैं जसविंदर जी, वो भी, और हमारे कोर्स में देखो है यहाँ डॉक्टर जयपाल जी, वो तो ऑटोमेटिक बच्चों को कनेक्ट ही करते रहते हैं और नई नई सोच के साथ वो आगे कोर्स को बढ़ा रहे हैं। और अंत में मैं सभी जो श्रोता जो हमारे सुनने वाले हैं, और आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, कम समय में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे जो जहाँ मैं हूँ वहाँ के बारे में, मेरे बारे में आपने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। मैं उससे आप सभी को तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, और आप आज जल्दी में हैं और क्योंकि हमारा समय भी समाप्त हो चुका है और उसके बाद हम आपको दोबारा बुलाएंगे और विस्तार से हम एक प्रोग्राम को रिकॉर्ड करेंगे। वैसे भी श्रोता हुआ, आप अनिल जी की आवाज जो है वो सुनते हैं हमारे सामुदायिक रेडियो पर, और परिचर्चा कार्यक्रम में अनिल यादव के साथ हमारी बातचीत जो की हुई है, इसमें उन्होंने अलग अलग भाषाओं में डायलॉग्स भी बोले हैं और जो जिज्ञासा इनकी रह गई थी, जो डायलॉग अपने बचपन में नहीं बोल पाए थे, वो भी हमने उसमें बुलवाया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया, और मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे आया और अपने गुरुजी से मिला और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, साथ में आप सभी का भी
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: जी श्रोताओं, आप सुन रहे थे, आज हमारे प्रसारण अब समाप्त हो गए हैं, टाइम हो गया है हमारे स्टूडियो की घड़ी में, समय है 9:05 और 18 सेकंड, और आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर और हम लाइव बात कर रहे थे हमारे शिष्य और हमारे अंबाला की शान असिस्टेंट प्रोफेसर अनिल यादव से जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा राई में इस समय कार्यरत है। आज जल्दी में से वो हमारे पास आए थे तो हमने सोचा इस मौके को क्यों जाने दें और हम उनसे जो बात की वो आप तक हमने पहुंचाई। कोशिश करते हैं कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है ये हम आपको एक बार फिर कल या परसों सुनाएं ताकि आप सभी तक इस बात को पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही, पर जाने से पहले आपसे मैं एक विषय पर बात करता हूं और आज हमारे साथ अनिल जी है तो रंगमंच के सिवा और हमारे पास आज कोई विषय नहीं हो सकता है। तो श्रोताओं, एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी। वक्त की सुइयां इशारा कर रही है कि अब हमें आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं थामना होगा। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के इस खामोश पहर तक आप सबका साथ रेडियो वितस्ता के लिए बेहद अनमोल रहा। आज के इस सफर को विदा कहने से पहले दिल चाहता है कि कुछ बातें उस विदा की हो या विदा के बारे में हो जो हमारे जीवन का एक ही दूसरा रूप है और वो है रंगमंच यानी थिएटर। हमारे जीवन में रंगमंच का असर और उसकी सीख हमें क्या मिलती है उसके बारे में कुछ बिंदु आपके सामने रखूंगा। श्रोताओं, मशहूर शायर जॉन एलिया ने कभी कहा था कि दुनिया एक स्टेज है लेकिन रंगमंच तरफदार है। उस जिंदगी का जो हम असल में जीते हैं, आइए जानते हैं कि रंगमंच का हमारे जीवन पर क्या असर होता है और ये हमें क्या सिखाता है। पहला बिंदु ये है कि भावनाओं का आईना। रंगमंच हमारे समाज और हमारी भावनाओं का सबसे सच्चा आईना है। जब स्टेज पर कोई कलाकार रोता है, हंसता है या संघर्ष करता है तो हम अपनी ही खुशियों और दुखों को सामने जीवंत देखते हैं। ये हमें अपनी ही भावनाओं से रूबरू कराता है। दूसरा, सहानुभूति और संवेदनशीलता यानी एम्पैथी। रंगमंच हमें दूसरों के जूतों में पैर रखकर देखना सिखाता है। एक अभिनेता जब किसी अन्य चरित्र को जीता है तो दर्शक के रूप में हम भी उस चरित्र के दर्द और संघर्ष को महसूस करते हैं। यह हमारे भीतर इंसानियत और संवेदनशीलता को जगाता है। तीसरा, अनुशासन और टीमवर्क। स्टेज पर देखने वाला चंद मिनटों की प्रस्तुति के पीछे हफ्तों महीनों की मेहनत और अनुशासन और पूरी टीम का तालमेल होता है। रंगमंच हमें सिखाता है कि जीवन में अकेले नहीं बल्कि सबको साथ लेकर कैसे आगे बढ़ा जाता है। और आखिरी, परिस्थितियों का सामना करना। नाटक में लाइव परफॉर्मेंस होता है, वहां कोई रिटेक नहीं होता। अगर स्टेज पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कलाकार को तुरंत संभालना पड़ता है। यही तो जिंदगी भी है। रंगमंच हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे जैसी भी आए, बिना रुके बिना डरे अपने किरदार को पूरी शिद्दत से निभाते रहना चाहिए। सच कहें तो रंगमंच हमें एक बेहतर, सजग और जीवंत इंसान बनाना सिखाता है। रेडियो वितस्ता पर आप हर शुक्रवार को, जैसे आज आपने सुबह 8:30 बजे सुना होगा कार्यक्रम रंगमंच की ओर, दिल्ली के एक महान कलाकार है मानव मेहरा। उनकी ये पहल है कि वो हमारे श्रोताओं को रंगमंच के बारे में उनकी बारीकियां सिखाते हैं और हम भी हर शुक्रवार को कार्यक्रम रंगमंच की ओर ले आते हैं हर दिन सुबह 8:30 बजे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आज वो कार्यक्रम सुना होगा। तो ये था आज का विषय और रोज की तरह कुछ पंक्तियां आप सभी को समर्पित। पंक्तियां आज की यूं है, लहरों की रवानी सी बहती रहे ये दास्तां, लहरों की रवानी सी बहती रहे ये दास्तां, दिलों में धड़कता रहे हमेशा रेडियो वितस्ता। आज रंगमंच की यादों के साथ विदा लेते हैं, आज रंगमंच की यादों के साथ विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे लेकर खुशियों का गुलिस्ता, कल फिर मिलेंगे लेकर खुशियों का गुलिस्ता। जी हां, ये आज की पंक्तियां थी और आज का समापन यही करते हैं। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का जल्दी से विवरण देता हूं। कर 11 जुलाई 2026 शुक्रवार को जो कार्यक्रम हम लाए वो इस प्रकार है। हमारी सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर, वंदे मातरम से हम शुरुआत करें। लाते हैं आपके लिए एक सुविचार और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6:00 बजे सुनेंगे भक्ति संगीत, 7:05 पर होगा कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 14। कल का कार्यक्रम आधारित है संगीतकार रोशन पर। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे आरजे किरनी। 8:30 बजे आप सुनेंगे किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 23। शीर्षक होगा मां की मौजूदगी ही कृपा है। और 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी एक दर्पण एपिसोड 7, वेमेन पावर के ऊपर यह आधारित कार्यक्रम है। पेश करेंगे आरजे सेजल। और 10:05 पर होगा कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादें और संगीत की सभा जारी रहेगी। 6:00 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7:00 बजे रेट्रो हिट्स एपिसोड 15। और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है होंठों से छू लो तुम। उम्मीद करते हैं कि आपको कल के कार्यक्रम पसंद आएंगे और आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब समय हो चला है रेडियो वितस्ता के आज के प्रसारण को यही विराम देने का। आप सब स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों के साथ खूबसूरत ख्वाब बुनते रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz हर दिन सुबह 6:00 बजे से रात के 9:00 बजे तक। अब अपने दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। कल सुबह 5:58 पर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।